नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज के सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर, जिसे आप सुन पाएंगे अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
2: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुके जागा।
3: ओ अंजलि बोन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनो ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है जलवायु परिवर्तन ने आनु प्रभाव अपने खेती माते हरते पड़ी रू है ने किसान भाईयों हमें कई कई चुनौती आवी रही है। तो भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घना कानी वाते थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा एने पहले अपने हमरा विदा गीत मोरे करा अपनी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहू आपू रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: મેનમુનુ ગીત તો આવીશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરું હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે જલવાયુ પરિવર્તન મેં આપણે કિસાન ભાઈ બોનોને હમે કઈ કઈ ચુનૌતી આવી રહી ને આના સમાધાન હું થઈ શકે. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે સોહનજી. તો સબતી કે પહેલા આપણે હમરી લણની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કિસાન ઓર બદલતી જલવાયુ કી ચુનૌતીઓ કો લેકર. તો સર સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે જલવાયુ પરિવર્તન ક્યા હૈ ઓર ઇસકા કિસાનો પર ક્યા પ્રભાવ પડ રહા હૈ.
1: અગર હમ જલવાયુ પરિવર્તન કો સમજના ચાહતે હૈ તો હમકો હમારે આસપાસ કે પર્યાવરણ કો સમજના હોગા ઓર ઉનમે અંતર કરના હોગા કે पिछले आपका 10 साल पुराना कोई भी दिन या मौसम हम उठाते हैं और उस मौसम में इन दिनों क्या तापमान रहा होगा और आज क्या तापमान है. अगर हम वर्षा ऋतु को देखते हैं तो वर्षा ऋतु में अगर हम देखते हैं तो कितने दिन उसी मौसम में वर्षा होती थी और अब कितनी हो रही है.
0: बिल्कुल.
1: और उसमें भी हमको कुछ अलग अलग चीजें जैसे देखनी पड़ेगी कि एक तो एकदम से तेज बारिश आके रुक जाना या निरंतर धीरे धीरे बारिश होना, प्लस ये भी हम देखेंगे कि बरसात के दिन हैं वो कितने दिन ज्यादा हुए या कितने दिन कम हुए.
0: बिल्कुल.
1: और मोटा मोटा ये समझ में आता हमको कि अगर हम देखें तो मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता, लेकिन वर्षा के जो दिन है उनमें काफी परिवर्तन आ गया.
0: बिल्कुल.
1: अभी अचानक से तेज बारिश होगी और घंटा दो घंटा एकदम तेज बारिश होके फिर जो है सूखा काल है वो ज्यादा आ जाएगा.
0: बिल्कुल.
1: जो एकदम वर्षा होगी वो अधिकतर पानी है वो बहके निकल जाएगा और वो पानी जो है किसानों के काम में नहीं आएगा.
0: बिल्कुल सर.
1: अभी हम गर्मी देखे तो हर साल हम देख रहे हैं कि तापमान धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे
0: बढ़ता
1: जा रहा है.
0: बिल्कुल.
1: तो हमको ये समझना होगा कि जैसे मानव शरीर है कि मानव शरीर हमारा तापमान जो है वो कितना सहन कर पाएगा.
0: जी जी.
1: या फसल है वो कितने तापमान में अच्छी तरह से फल फूल पाएगी. जो पुरानी जो उसकी परंपरा है या उसका पकने का जो तापमान है कि हम देखते हैं कि हर फसल का अपना अपना तापमान का पीरियड रहता है या एक अंतराल रहता है कि इतने से इतने तापमान के बीच में ये अच्छी फसल पकेगी या ये फसल यहाँ होगी.
0: बिल्कुल.
1: हम अलग अलग जगह जाते हैं, अगर अलग अलग देशों में भी हम फसलों का देखें, जो फसलें होती है वो तापमान के आधार पे होती है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा.
1: हाँ. तो धीरे धीरे अगर तापमान का संतुलन बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे फसलों का जो उत्पादन है वो डिस्टर्ब होगा या उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए.
0: बिल्कुल.
1: उसमें फर्क आएगा.
0: जी जी.
1: फिर उनका अंकुरण की जो क्षमता है उनमें फर्क आएगा. ठीक है. और उनके जो रोग है वो भी हम देखेंगे कि जो तापमान के आधार पे, आर्द्रता के आधार पे, नमी के आधार पे वो रोग है वो वहां आते हैं. या कीट पतंगे भी जो है वातावरण के आधार पे या तापमान के आधार पे, नमी के आधार पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं.
0: जी हाँ.
1: भोजन की तलाश में.
0: बिल्कुल सर.
1: जहाँ पे उनके अनुचित वातावरण हो वहाँ वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं.
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और इसका किस प्रकार से प्रभाव हमारे खेती पर पड़ता है, यही सर किसानों को बदलते मौसम के अनुसार अपनी खेती में क्या क्या बदलाव करने चाहिए.
1: बदलते मौसम के अनुसार हम देखते हैं कि जो हमारा जो खेती में बदलाव का हम बात करते हैं तो हमारे कुछ परंपरागत फसलें हैं जिनमें इस तरह की बदलाव को सहन करने की क्षमता थी.
0: बिल्कुल.
1: तो उन फसलों को हमें पुनर जीवित करना चाहिए या उन फसलों को हमें पुनः बोना चाहिए, और कहीं उसका बीज संरक्षित है तो वो बीज हमको लाके और उन फसलों को हमको पुनः चालू करना चाहिए
0: जी जी।
1: ताकि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ सके और हमारे अच्छी फसल, साथ ही हमारे जो आसपास का वातावरण है कि हमें पता है कि सौर मंडल में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हम हमारे स्तर पे ऐसे क्या उपाय कर पाए कि जिससे हम उनसे लड़ सके या वो तापमान है हमारे यहाँ बेअसर कर दे।
0: बिल्कुल।
1: जैसे हमको जल संरक्षण है, जल संरक्षण को हमको जो है जितनी भी हमारी परंपरागत गतिविधियां है उनको हमको पुनः चालू करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तालाब, पहले बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे है ना, उनको हमको वापिस से लाना होगा
0: जी जी।
1: हमारे यहाँ जंगल, जंगल के लिए जमीन तो नहीं बची है, लेकिन पेड़ पौधा हम हमारे खेत की मेड़ मेड़ पे लगा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जहाँ पे भी हमारा खाली स्थान पड़ा है कहीं पे भी और जमीन पड़ी है वहाँ पे हमको हमारा खुद का व्यक्तिगत पौधरोपण करना चाहिए। जहाँ पंचायतों में हम देखते हैं कि खाली जमीन पड़ी है या जहाँ चारागाह है या पहाड़ियां है वहां पे हमको पौधरोपण की गतिविधियां करनी चाहिए ताकि जो वातावरण में जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा कम असर हमारे यहाँ पे जो है वो रहे और अनुकूल वातावरण बना रहे।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें जल संरक्षण के महत्व को भी समझना है, यही सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए किसानों को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है।
1: खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए सर्वप्रथम तो हमको ये करना चाहिए कि हमको खेती में जो खर्च है, हम क्या देखते हैं कि हमारी एक देखने का नजरिया हो गया कि हम जब फसल बाजार में लेके जाते हैं, बेचते हैं, हाथ में जो रुपया आता है उस रुपये को हम आमदनी समझने लगते भूल से, जबकि वो आमदनी नहीं है, उसमें से खर्चा हमको निकालेंगे तब आमदनी बचेगी। और जब हम ये हिसाब किताब करते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि आमदनी के नाम पे या तो हमको गिने चुने कुछ रुपये बचते हैं या कभी हम कह देते हैं कि ये तो घाटे का सौदा है, लेकिन हम हिसाब किताब नहीं करते और हम जो है नकदी फसल पे चले जाते हैं और नकदी फसल को हम करने लगते हैं क्योंकि वो बाजार में एक साथ बिक जाती है। हमको ये देखना होगा सर्वप्रथम कि मैं मेरी खेती में कितना जो खर्च है वो कम कर सकता हूँ। जैसे हम खाद को देखें तो हम खाद, हमारे यहाँ पे बहुत परंपरागत विधियां हैं, जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, कंडा का खाद है, कंडा पानी है, इस तरह की बहुत परंपरागत खाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेहनत से बचने के खातिर उस ओर नहीं जाके हम बाजार से डीएपी यूरिया खरीद के लाते हैं। एक तो खर्च करते हैं, दूसरा जमीन बिगाड़ते हैं, तीसरा हमारा स्वास्थ्य खराब करते हैं।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, लेकिन हम वो नहीं देखते, लेकिन हम तुरंत क्या देखते हैं, अरे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये 500 रुपए का कट्टा, ये 1500 रुपए का कट्टा लाके डाल दो चलो।
0: बिल्कुल।
1: और ये जो जैविक खाद बनाने में बहुत समय जाता है और मेहनत जाती है और संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तो इसलिए लोग जो है रासायनिक खाद की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वो सरलता से मिल रहा है।
0: बिल्कुल, लेकिन सर हम देखते हैं कि वो सरलता से मिल तो जाता है लेकिन उसके लिए हमें कर्जा भी लेना पड़ता है क्योंकि वो रासायनिक खाद बहुत महंगे आते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जैविक जो खेती है उसमें हमें सामान जुटाना पड़ता है जो कि हमारे आसपास ही होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी खेती को बिना खर्च के पूरा करें तो उसके लिए हमें इन सारी चीजों को महत्व देना बहुत जरूरी है क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से हम आसपास की चीजों का सही तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं और साथ ही अपने खेती का पोषण भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी खेती में अवसर मौजूद है।
1: बहुत अवसर मौजूद है, हमारे जो परंपरागत खेती पद्धति है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से थी। जो आपने जो सर्वप्रथम बात की ना जलवायु परिवर्तन, उससे लड़ने की पूरी क्षमता उनमें है। अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं, अक्सर जो देता रहता हूँ हांगणी खेती का उदाहरण।
0: बिल्कुल।
1: हांगणी खेती में हम देखेंगे कि हम 20 से 25 प्रकार की ऐसी फसलें एक ही खेत में बोई कर देते हैं जो हमारे रोजमर्रा के खाने के काम में आती है, ठीक है। अब अगर मौसम में उतार चढ़ाव हुआ है, या तो बारिश कम हुई, बारिश ज्यादा हुई, या खेत में पानी भर गया, एक फसल खत्म होगी, दो फसल खत्म होगी, तीन फसल खत्म होगी, बाकी फसलें तो उत्पादन देगी।
0: बिल्कुल।
1: तो इस प्रकार की बहुत सारी परंपरागत पद्धतियां हैं हमारे कृषि शास्त्र में, हमको जरूरत है उनको पुनः लाने की।
0: जी जी।
1: और हमको सरकार को भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परंपरागत पद्धतियों के ऊपर शोध होना चाहिए, और शोध से जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो किसानों के साथ में अच्छी तरह से वापस उनके साथ में शेयर होना चाहिए। क्योंकि रिसर्च तो बहुत होते हैं लेकिन वो किताबें बन के रह जाते हैं, वो किसानों तक वापस आ नहीं पाते, या किसानों के पास आते हैं लेकिन जिस रूप में उनके आना चाहिए उस रूप में नहीं आते हैं। तो इसीलिए किसान भटक रहा है, और ये भटकते किसान को वापस सही रास्ते पे लाने के लिए हमारी जो परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं उन पे हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, और उनको पहचानना पड़ेगा, पहचान के और उनको आज के समय के अनुसार उसमें कुछ जरूरी बदलाव है वो करके पुनः हमको किसानों को देना चाहिए, ताकि वो ये सारी जो चुनौतियां है उनसे लड़ सके।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि हमारी आपसे बातें चल रही हैं कि किसान और बदलती जलवायु की चुनौतियां क्या हैं, तो आप हमारे किसान भाई बहनों को कार्यक्रम के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: मैं मेरे किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी परंपरागत कृषि पद्धतियों के बारे में आप जानते हैं तो आप हमारा जो वागड़ रेडियो है इस पे आप अवगत कराए, आप अपने जो विचार है वो फीडबैक दे, ताकि हम उनको आने वाले समय में उनके ऊपर बातचीत कर सके, अन्य किसानों के पास भी आपकी बातचीत है वो पहुंचा सके।
0: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: જલવાયુ પરિવર્તન શું કહેવાય છે, આનો પ્રભાવ ખેતીમાં તે હરતે વધી રહ્યું છે, આને કારણ કીટ પતંગ જે હે એનાનો પ્રકોપ હરતે વધી રહ્યું છે, ને સમાધાન શું થઈ શકે? તો આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा धर की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अच्छा खाना वही है जो बच्चों को ताकत दे। हमारे गांव में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि बच्चा दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता है,
0: बिल्कुल,
1: फिर भी उसका शरीर कमजोर रहता है, बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और खेलते समय भी वह जल्दी थक जाते हैं। कई बार माँ भी दिन भर काम करती है लेकिन शरीर में कमजोरी बनी रहती है।
0: बिल्कुल,
1: समस्या कशिश केवल भूख की नहीं बल्कि सही पोषण की है। पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को वह भोजन नहीं मिलता जिससे खून बने, हड्डियां मजबूत हो और शरीर बीमारियों से लड़ सके।
0: जी हाँ,
1: पहले घरों में दाल, चना, बाजरे की रोटी, सहजन की सब्जी और घर का बना खाना खाया जाता था। अब उसकी जगह चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले खाने ने ले ली है और ये चीजें स्वाद तो देती है लेकिन शरीर को ताकत नहीं देती।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार को लेकर। अंजलि जी, बच्चों की मुस्कान, उनका स्वास्थ्य और उनका उज्जवल भविष्य केवल अच्छी पढ़ाई या अच्छे स्कूल से नहीं बनता, बल्कि हम देखते हैं कि इसकी मजबूत नींव सही खानपान से ही पड़ती है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दोस्तों, एक स्वस्थ बच्चा ही आत्मविश्वासी, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकता है। लेकिन अंजलि जी, आज के समय में बदलती जीवन शैली और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ और जंक फूड की बढ़ती आदतों ने बच्चों के स्वास्थ्य के सामने ढेर सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे माता पिता को और हम सभी को समझना यह बहुत जरूरी है कि सही खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ भावनात्मक विकास की सबसे बड़ी जरूरत भी है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि जब बच्चे पौष्टिक भोजन को खाते हैं तब वे कम बीमार पड़ते हैं और नई नई चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, साथ ही परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, बच्चों को ऐसा भोजन चाहिए जिसमें ताकत और पोषण दोनों हो। बाजरा, मक्का, ज्वार और चावल शरीर को ऊर्जा देते हैं। दाल, चना, मूंगफली और अंडा शरीर और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खून बढ़ाने के लिए गुड़, चुकंदर और हरी सब्जियां जरूरी है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए तेल, दूध, सहजन की पत्तियां फायदेमंद है। बीमारी से बचने के लिए आंवला, नींबू और मौसमी फल बहुत उपयोगी होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बच्चों के लिए जरूरी है कि हम उन्हें स्वस्थ भोजन की आदत डालें। सुबह खाली पेट स्कूल न भेजें। खेलने के बाद चना, गुड़ या फल दे सकते हैं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा कई बार खिलाएं। मोबाइल और टीवी देखते हुए खाना न दें। पैकेट वाले खाने की आदत कम करें और वो खाना जिसे हमने पीछे छोड़ दिया है, हमारे खेतों और आंगन में ही पोषण छिपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: जो खाना पहले हर घर में बनता था कशिश, वही आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बाजरा शरीर को ऊर्जा देता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है और हड्डियों को मजबूत करता है। चना सस्ता होने के बावजूद ताकत से भरपूर होता है।
0: जी हाँ।
1: गुड़ केवल कशिश मिठास नहीं देता बल्कि खून भी बढ़ाता है। सहजन की पत्ती गांव को आसानी से मिल जाती है और इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन भरपूर होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तेल छोटे दाने जरूर है श्रोता साथियों, लेकिन शरीर को बहुत ताकत देते हैं। आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि पौष्टिक भोजन का मतलब महंगे भोजन से नहीं है, बल्कि हमारे घरों में उपलब्ध साधारण खाद्य पदार्थों में ही पौष्टिक चीजें होती हैं साथियों।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि दालें, फलियां, दूध और दही, रोटी, चावल और बाजरा, दोस्तों ये सभी बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। वहीं अगर जंक फूड की बढ़ती समस्या को लेकर बात करें तो अंजलि जी, जैसा कि आपने भी बताया था कि आजकल बच्चों में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, बर्गर और अन्य पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, इन खाद्य पदार्थों में अक्सर अधिक नमक रहता है, अधिक चीनी रहती है, या फिर कह सकते हैं कि गंदे तेल का भी इस्तेमाल होता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में लगातार ऐसे भोजन का सेवन करने से बच्चों में मोटापा, दांतों की समस्या या फिर कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।
1: जी जी।
0: इसलिए अंजलि जी, बच्चों को पूरी तरह रोकने के बजाय उन्हें सही और गलत भोजन का अंतर समझाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ महिलाओं को भी इन सारी चीजों को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। घर की महिला स्वस्थ होगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अक्सर महिलाएं सबसे आखिरी में खाना खाती हैं और सबसे ज्यादा काम भी करती हैं। इसी कारण कई महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी और थकान बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: महिलाओं को रोज हरी सब्जियां, दाल, चना, तिल और ये सारी चीजों का सेवन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से ही इन सारी चीजों को सीखता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनका स्वास्थ्य सीधे बच्चों से जुड़ा होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो आयरन, कैल्शियम की गोली समय पर लें, कम से कम 4 बार स्वास्थ्य जांच कराएं, बहुत भारी काम न करें, पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन लें और मौसम बदल लें तो हमारी आदतें भी हमें बदलनी होगी। मौसम के साथ शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। थोड़ी सी सावधानी कई बीमारियों से बचा सकती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी पीना चाहिए और हल्का भोजन लेना चाहिए। छाछ, नींबू, पानी, बेल और तरबूज जो है वो हमारे शरीर को ठंडक देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है स्वस्थ भोजन और स्वस्थ बचपन को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों को खाना जो सच में उन्हें ताकत दे वो उन्हें हमें देना होगा। इसी के साथ बच्चों की आदतों में कुछ जरूरी चीजें हमें शामिल करनी है। और कशिश, हमने गीत से पहले ये भी जाना था कि गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और उनके स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। इसी के साथ हम ये जान पाए थे कि गर्मी में हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। यहीं बरसात में उबला पानी पीना, भोजन ढककर रखना और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके।
1: बिल्कुल,
0: तुलसी, नीम, हल्दी और अदरक इस मौसम में फायदेमंद होते हैं। सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। बाजरा, तिल, गुड़, अदरक और हल्दी शरीर को गर्म रखते हैं और ताकत भी बढ़ाते हैं। याद रखें श्रोता साथियों, बच्चों को धूप और ताजी हवा जरूर मिलनी चाहिए। गंदा और बासी खाना बीमारी बढ़ा सकता है, इसलिए बच्चों को इन सारी चीजों से हमें दूर रखना है। और मौसम के अनुसार भोजन बदलना भी जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से हम गिर जाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर इससे में हम परिवार की भूमिका को जाने तो देखते हैं कि बच्चों की खाने की आदतें घर से ही बनती हैं। यदि अंजलि जी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी समय पर भोजन करेंगे, फल सब्जियां खाएंगे और जंक फूड कम खाएंगे तो बच्चे भी उन्हें देखकर यही सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं, इसलिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के लिए सबसे बड़े उदाहरण बन सकते हैं। इसी के आगे अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कई बार बच्चे भोजन इसलिए नहीं खाते क्योंकि खाने का समय तनावपूर्ण बना दिया जाता है। यानी कि बच्चों को डांट कर या फिर डरा कर भोजन कराने के बजाय माता पिता को अंजलि जी उन्हें प्यार से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो बच्चों में अच्छी आदतें विकसित होती हैं और परिवार के रिश्ते भी इससे मजबूत होते हैं। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, हमारे घरों में कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जो छोटी बीमारियों में राहत देते हैं। खांसी जुकाम में तुलसी, अदरक और शहद फायदेमंद होता है। पेट दर्द में अजवाइन और काला नमक उपयोगी है और कमजोरी होने पर भीगा चना और गुड़ ताकत देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: छोटे घाव पर हल्दी का लेप लगाने से राहत मिलती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बीमारी कई बार खाने से नहीं बल्कि गंदगी से फैलती है।
1: बिल्कुल,
0: साबुन से हाथ धोना सबसे सस्ती और असरदार आदत है। साफ पानी, साफ बर्तन और साफ हाथ अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत है, इसलिए हमें बच्चों को इसके महत्व को भी बताना है। जब गांव का हर परिवार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझने लगेगा कशिश, तभी असली बदलाव दिखाई देगा। क्योंकि पोषण केवल रसोई की बात नहीं, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी में बच्चों का नियमित वजन करवाना जरूरी है। ग्रोथ कार्ड केवल एक कागज नहीं बल्कि बच्चों की बढ़त और स्वास्थ्य की कहानी है। यदि बच्चे का वजन लगातार नहीं बढ़ रहा है तो यह संकेत है कि उसके भोजन और देखभाल पर ध्यान देने की जरूरत है। महिला समूह और गांव की बैठकों में केवल योजनाओं की नहीं बल्कि भोजन और पोषण की बात भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: गांव की महिलाएं मिलकर सीख सकती हैं कि सहजन की पत्ती को बच्चे के खाने में कैसे मिलाएं, बाजरे और गोंदों से पौष्टिक खिचड़ी कैसे बनाए, गुड़ और चने से सस्ता लेकिन ताकत देने वाला नाश्ता कैसे तैयार करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि बचपन जो है वो जीवन की वह नींव है जिस पर पूरे भविष्य की इमारत खड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों इस नींव को सही पोषण, अच्छी आदतों और पारिवारिक सहयोग का सहारा मिल जाए तो बच्चे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मविश्वासी और सक्षम बनते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा अपने परिवार की खुशी, समाज की आशा और देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक होता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, हमें ये समझना होगा कि बच्चों को दिया गया हर पौष्टिक निवाला केवल उनका पेट नहीं भरता बल्कि उनके सपनों को भी ऊर्जा देता है।
0: जी जी,
1: उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके जीवन को एक नई दिशा देता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना है कि हम अपने घरों में पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देंगे, बच्चों को स्वस्थ आदतें सिखाएंगे और ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां हर बच्चा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बचपन जी सके।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने जाना कि सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार का क्या महत्व है और किस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर हमें सचेत होने की जरूरत है। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी,

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि युवाओं में चिंता के क्या नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम बात करते हैं कशिश, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, और ये विषय है चिंता या एंजाइटी के नुकसान।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, चिंता करना एक सामान्य मानवीय भावना है। परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के कारण कभी कभी चिंता होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब यही चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है कशिश और हमारे जीवन पर हावी होने लगती है, तब ये एंजाइटी का रूप ले लेती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत सारे युवा, विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग और यहाँ तक कि बच्चे भी चिंता की समस्या से जूझ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि अत्यधिक चिंता हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम युवा साथियों को पहले मनोरंजन करवाते हैं गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना अभी एक प्यारा सा गीत सुन ले और फिर हमारी बातचीत की शुरुआत करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं युवाओं में एंग्जायटी यानी कि चिंता और भय होने के नुकसान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था जागृति जी युवा साथियों को कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई युवा साथी चिंता में होते हैं। दोस्तों, कई बार हम स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं।
1: जी हाँ,
0: उनके भीतर जो बेचैनी, डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना होती है उन्हें हम एंग्जायटी कहते हैं साथियों।
1: जी हाँ,
0: इसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि शरीर, शिक्षा, करियर, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारे युवा साथियों के लिए समझना जरूरी है कि एंग्जायटी केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो युवाओं के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि आपने बताया था कि चिंता का सबसे पहला असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार चिंता करने वाला व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है, उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो कहीं और ध्यान ही नहीं दे पाता।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होने लगती है, उसे हर स्थिति में खतरा और असफलता दिखाई देने लगती है। कई बार यही स्थिति अवसाद यानी कि डिप्रेशन तक पहुंच सकती है। ऐसे लोग अक्सर खुशियों का आनंद लेना भूल जाते हैं, उनके सामने सब कुछ ठीक होने पर भी मन बेचैन रहता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी जो एंग्जायटी से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो बार बार नकारात्मक बातें ही सोचने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनके अंदर भविष्य को लेकर ढेर सारे डर बने रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर भी वे तनाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में उनके मन में हमेशा ही अनिश्चितता बनी रहती है। जागृति जी, हम कहना चाहेंगे कि युवाओं में यह समस्या विशेष रूप से देखने को मिल रही है क्योंकि यह जीवन का वह दौर है जब व्यक्ति पहचान बनाने, लक्ष्य तय करने और भविष्य की दिशा चुनने की कोशिश कर रहा होता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में दोस्तों एंग्जायटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि युवाओं के अंदर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। हम देखते हैं जागृति जी कि जब कोई युवा लगातार चिंता में रहता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास कम होने लगता है।
1: जी हाँ,
0: वह हर काम शुरू करने से पहले ही असफलता के बारे में सोचने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और वह अवसरों से दूर भागने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: साथियों चाहे प्रतियोगिता हो, इंटरव्यू हो या मंच पर बोलना हो या फिर कोई नया काम शुरू करना हो, हर जगह युवा साथी डरने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि आत्मविश्वास की यही कमी युवाओं की प्रगति में बड़ी बाधा बन सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि चिंता व्यक्ति के आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। वो अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है, उसे लगता है कि वह कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हर निर्णय लेने से पहले वो कई बार सोचता है और फिर भी डरता है। जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तो व्यक्ति नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता, वो जोखिम लेने से बचता है और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होता चला जाता है।
0: जी जी,
1: इसीलिए हम कह सकते हैं कि युवाओं में चिंता का सबसे बड़ा असर पढ़ाई और करियर पर देखा जाता है। परीक्षा का डर, भविष्य की चिंता, नौकरी की प्रतिस्पर्धा और दूसरों से तुलना, ये सारे कारण चिंता को बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब मन चिंतित होता है कशिश तो एकाग्रता कम हो जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, व्यक्ति बार बार वही बातें सोचता रहता है जो उसे परेशान कर रही होती है।
0: जी जी,
1: हम देखते हैं कि कई छात्र केवल चिंता के कारण अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आप सही कह रही हैं। तो जैसा कि हम युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में युवाओं में एंग्जायटी यानी कि चिंता और भय की समस्या बढ़ रही है, तो आगे भी ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोताओं को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी एंग्जायटी को लेकर, यानी कि चिंता को लेकर, कि चिंता के क्या नुकसान हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे चिंता क्या है, चिंता का मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है, आत्मविश्वास में किसी कमी आती है, पढ़ाई और करियर पर किस तरह से असर डालता है। यहीं अगर शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर बात करें कशिश, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि चिंता केवल मन की समस्या है, लेकिन इसका असर शरीर पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: लगातार चिंता करने से सिर दर्द, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और पेट की समस्या होने लगती है। कई लोगों को दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पसीना आने लगता है और सांस लेने में परेशानी होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक चिंता रहने पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा साथियों में नींद की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखते हैं कि एंग्जायटी का सबसे बड़ा नुकसान नींद पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: कई युवा ऐसे हैं जो रात भर भविष्य, पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों या फिर अन्य चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं। उनका मन शांत नहीं हो पाता, जिसके कारण नींद आने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में साथियों पर्याप्त नींद न मिलने से अगले दिन हमें थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और कार्य क्षमता में गिरावट आती है। और लगातार खराब नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जो चिंता और भय है वो केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जो चिंताग्रस्त युवा है वो कई बार तनाव के कारण लोगों से दूरी बनाने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे अपनी समस्याएं लोगों से साझा नहीं करते और अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं।
0: जी हाँ, और हम देखते हैं कशिश की चिंता व्यक्ति की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार यही बातें कर रहे हैं।
1: जी,
0: जब मन डर और शंका से बना होता है तभी सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। व्यक्ति हर विकल्प में खतरे खोजने लगता है, वो निर्णय लेने में बहुत समय लगाता है और फिर कोई निर्णय नहीं ले पाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, चिंता का सबसे दुखद नुकसान ये है कि वो व्यक्ति से वर्तमान का आनंद छीन लेती है।
1: जी जी।
0: वो भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वर्तमान की खुशियां भी नहीं दिख पाता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय बिताना, परिवार के साथ हंसना, प्रकृति का आनंद लेना, ये सब पीछे छूट जाता है। जबकि जीवन केवल भविष्य की तैयारी का नाम नहीं है, बल्कि वर्तमान को जीने का नाम भी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर करियर विकास में बाधा की बात की जाए तो देखते हैं कि करियर निर्माण के लिए साहस, पहल और अवसरों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एंग्जायटी जो है वो युवाओं को जोखिम लेने से रोकती है। जागृति जी, वे नई जिम्मेदारियों से बचते हैं, इंटरव्यू देने में डरते हैं और अपनी प्रतिभा को सामने लाने में भी संकोच करते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, जिसके कारण हमारी योग्यताएं होने के बावजूद भी हम अवसरों से पिछड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जिस चीज के हम हकदार होते हैं वो भी हमें नहीं मिलती। इसलिए युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे जागृति जी कि युवा साथियों, एंग्जायटी कोई कमजोरी नहीं है।
0: जी हाँ।
1: बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: यदि चिंता समय रहते पहचानी और प्रबंधित की जाए जागृति जी, तो व्यक्ति सामान्य, सफल और संतुलित जीवन जी सकता है।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ।
1: वहीं इसे अगर हम अनदेखा कर दें तो ये आत्मविश्वास, शिक्षा, करियर, रिश्तों और साथ ही जीवन के आनंद को भी प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि चिंता के नुकसान जानना जरूरी है, लेकिन उससे बचने के उपाय जानना उतना ही जरूरी है।
1: जी जी।
0: जैसे नियमित व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेनी है, सकारात्मक सोच को विकसित करना है, समय का सही प्रबंधन करना है, अपनी समस्याएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करनी है।
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना है।
1: जी जी।
0: ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाए रखना है और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। याद रखिए श्रोता साथियों, हर समस्या का समाधान होता है, चिंता समाधान नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचने में बाधा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जीवन में चुनौतियां आएंगी, कठिन समय भी आएगा, लेकिन चिंता को अपना साथी बना लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: चिंता उस झूले की तरह है जो हमें लगातार हिलाता तो रहता है लेकिन कहीं पहुंचाता नहीं है।
1: जी जी।
0: इसलिए याद रखिए, हमारे भीतर हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मौजूद है। जब भी मन में चिंता आए अपने आप से कहिए, मैं समस्या से बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, मेरी हिम्मत मेरी चिंता से बड़ी है। जीवन अनमोल है, इसे डर, तनाव और बेवजह की चिंताओं में मत गवाइए। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़िए। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो चिंताओं के अंधेरे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास की रोशनी में चलना चुनते हैं। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथी यही कहना चाहेंगे कि चिंता नहीं चिंतन करें, डर नहीं प्रयास करें। जीवन बहुत अनमोल उपहार है, हौसलों से इसका सत्कार करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई, हमने युवा साथियों को बताया कि किस प्रकार से हमारे अंदर चिंता और भय की भावना रहती है,
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ढेर सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम युवा साथियों को बता चुके हैं। अब जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर अंतिम गीत सुनवाए दोस्तों को।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विकास की अंधी दौड़ में शरीर के साथ मस्तिष्क भी प्रभावित हो रहा है। श्रोताओं, जैसा कि जब हम विकास शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार वाहन और आर्थिक प्रगति की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या केवल यही विकास है? क्या विकास का अर्थ केवल अधिक कमाना, अधिक पाना और दूसरों से आगे निकल जाना है? यदि ऐसा है तो फिर आज दुनिया में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति क्यों पड़ रही है?
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस विषय पर कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें?
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ,
0: और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है विकास की अंधी दौड़ में शरीर के साथ मस्तिष्क भी प्रभावित हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, ये प्रश्न हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। आज इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन कई बार अपने ही मन तक नहीं पहुंच पा रहा। उसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण खोता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: यही वो स्थिति है जहां विकास की अंधी दौड़ हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करने लगी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि विकास जीवन के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन श्रोता साथियों, जब विकास एक अंधी दौड़ बन जाता है, तब यह हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। विकास का मतलब जागृति जी, जैसा कि आपने भी बताया, कि केवल धन, बड़े घर, ऊंची इमारतें और आधुनिक तकनीक ही नहीं है। सच्चा विकास वो है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल हो।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज हर व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है। जैसा कि आपने बताया, हमारे जो छात्र हैं वो अधिक अंक चाहते हैं, युवा ऊंची नौकरी चाहते हैं, व्यापार में अधिक लाभ चाहते हैं, समाज में हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रयास में लोग ये भूल जा रहे हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और संतोष भी उतने ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। हम कहना चाहेंगे कि विकास की अंधी जो दौड़ है, उसमें विकास जरूरी है, लेकिन मन में संतुलन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब व्यक्ति लगातार काम करता है और आराम नहीं करता, तो शरीर थकने लगता है, नींद पूरी नहीं होती है, सिर दर्द और थकान बढ़ती है। इसी के साथ जागृति जी, आंखों की समस्या बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: मोटापा, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज का जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गया है। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि मोबाइल की घंटियां, ईमेल, सोशल मीडिया और काम का दबाव व्यक्ति को लगातार सक्रिय रहने के लिए मजबूर कर रहा है। श्रोता, ऐसी स्थिति में मस्तिष्क को आराम नहीं मिल पाता है, वो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। धीरे धीरे स्थिति इतना तनाव का रूप ले लेती है अंजलि, कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी परेशान होने लगता है।
1: जी जी।
0: उसके अंदर जो धैर्य वो भी कम हो जाता है और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होने लगता है। आज हम देखते हैं कि कई युवा ये महसूस करते हैं कि वे लगातार व्यस्त हैं, लेकिन भीतर से खुश भी नहीं है। इसका कारण यही है दोस्तों कि उन्होंने विकास की दौड़ में अपने मन की आवाज को सुनना बंद कर दिया है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई युवा कम उम्र में ही तनाव और शारीरिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। श्रोता साथियों, शरीर की तरह मस्तिष्क भी लगातार दबाव सहता है, तनाव बढ़ता है, चिंता और घबराहट होती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और एकाग्रता कम हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, कई लोग सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब मन स्वस्थ रहेगा, तब जीवन महान बनेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब मस्तिष्क पर दबाव बढ़ता है, तो उसका असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग देर रात तक जागते रहते हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, घंटों मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां आजकल कम होती जा रही है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, कम उम्र में ही लोगों को थकान होती है, जैसा कि अभी आपने बताया, सिर दर्द होता है, आंखों की कमजोरी हो जाती है। तो ये जो समस्या है श्रोता साथियों, ये छोटी उम्र में ही होने लगती है। जिन बीमारियों को वृद्धावस्था की समस्या माना जाता था, वे आज युवाओं में भी दिखाई देने लगी है।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कोई भी सफलता लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन अभी के समय में हम जी रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो उतार चढ़ाव के तौर पर हमारे जीवन में आती है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से आज हम विकास की बात कर रहे हैं, तो हम हमारे श्रोता साथियों से ये कहना चाहेंगे कि विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ हमारा मानसिक रूप से संतुलित रहना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से शांत नहीं रहेंगे, तब तक हम हमारे घर परिवार, समाज और अन्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब मस्तिष्क की चीजें तनावग्रस्त होने लगती है, तो चिड़चिड़ापन और कई समस्याएं, जैसा कि अभी हमने बताया, कि पैदा हो जाती है। इसके चलते रिश्तों में कड़वाहट आना और कई सारी अन्य जो चीजें हैं वो नुकसानदेह हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में हमारे लिए समझना जरूरी है कि विकास के साथ साथ हमारी जो कार्य की गति है, उसको हम सही तरीके से करें और हमारे जो अन्य कार्य हैं जीवन के लिए जो जरूरी होते हैं, उन पर भी हम ध्यान दें।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से जब हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हैं और अगर हमारा मस्तिष्क संतुलित नहीं है तो इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर हमारे ऊपर हमें देखने को मिलता है। यही बात करें तो श्रोता साथियों, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके ज्यादा उपयोग ने मानसिक दबाव भी बढ़ाया है।
1: बिल्कुल,
0: लोग हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, इससे आत्मविश्वास कम होता है और जागृति जी तनाव बढ़ता है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि यह समस्या युवाओं से लेकर बच्चों, बड़ों सब में फैलती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन के पीछे का संघर्ष नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसमें हमारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। और अन्य लोगों को ये लगता है कि हमारा जीवन उन व्यक्तियों की तुलना में अच्छा नहीं है और ये तुलना धीरे धीरे हमारे मन को और कमजोर करती जाती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलताएं दिखाते हैं, जैसा कि आपने बताया, कोई विदेश यात्रा की तस्वीर डालता है, कोई नई गाड़ी दिखाता है, तो कोई अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है।
0: बिल्कुल,
1: ये सब देख कर कई लोग स्वयं को कमतर समझते हैं। श्रोता साथी, भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया जीवन का पूरा सच नहीं दिखाता। जैसा अंजलि आपने बताया, विकास की अंतिम तोड़ का एक बड़ा दुष्प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे दूर होते जा रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, लोग मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और अपनों के साथ कम रह रहे हैं। जब रिश्तों में संवाद कम होता है तब अकेलापन बढ़ता है और अकेलापन मानसिक तनाव को और अधिक बढ़ा देता है।
0: जी बिल्कुल,
1: परिवार केवल रहने की जगह नहीं है श्रोताओं, बल्कि भावनात्मक शक्ति का स्रोत है। यदि हम विकास के नाम पर अपने रिश्तों को खो देंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है और हम अकेले ही विकास की अंधी दौड़ में खुद को आगे लेकर जा रहे हैं और परिवार पीछे छूट रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम पछताते हैं, क्योंकि हमें हमारे अपनों की जरूरत हर पल पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार को साथ में लेकर सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जागृति जी, सच्चा विकास वो है जिसमें शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क शांत हो, परिवार खुश रहे, समाज मजबूत हो और प्रकृति सुरक्षित हो।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि मानव विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानसिक शांति का भी स्रोत है। जब हम पेड़ों, नदी और खुले वातावरण से दूर होते हैं तो मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: और कई सारे शोध बताते हैं कि प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होती है। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आप भी प्रकृति से नाता जोड़िए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि केवल आर्थिक प्रगति ही विकास नहीं है, बल्कि खुशहाल और संतुलित जीवन ही वास्तविक विकास है। कहा गया है कि धन से पहचान नहीं बनेगी, अच्छे जीवन से शान बनेगी। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि युवा देश का भविष्य है, उन्हें यह समझना होगा कि सफलता और स्वास्थ्य दोनों ही कितने जरूरी है, क्योंकि सफलता के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करना जरूरी है, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है, मोबाइल का कम उपयोग करना होगा, परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और योग और ध्यान को अपनाना होगा, क्योंकि अब युवा स्वस्थ होगा तब राष्ट्र मजबूत बनेगा और यही विकास का सच्चा पात्र है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। उन्हें पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है और भविष्य भी सुरक्षित करना है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन ये सब करते समय उन्हें अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ध्यान रखना है। सफलता महत्वपूर्ण है श्रोता साथी, लेकिन सफलता पाने के लिए स्वयं को खो देना समझदारी नहीं है।
0: जी जी,
1: युवा यदि समय प्रबंधन सीख ले, नियमित व्यायाम करे, पर्याप्त नींद ले और सकारात्मक सोच रखे तो विकास और संतुलन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। अंजलि, श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सच्चा विकास वो नहीं जो केवल आर्थिक उन्नति दे।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा विकास वो है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, जहाँ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नैतिकता हो, मानसिक शांति हो, सामाजिक समानता हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो, वही वास्तविक विकास है। यदि विकास हमें तनावग्रस्त, अकेला और बीमार बना दे तो हमें अपने विकास के मॉडल पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विकास की राह पर चलना जरूरी है, लेकिन इतनी तेज भी नहीं कि हम अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दें। यदि सफलता के साथ शांति नहीं है तो सफलता अधूरी है, यदि विकास के साथ स्वास्थ्य नहीं है तो वह विकास अधूरा है। इसलिए हमें हमारे मन को इतना मजबूत बनाना होगा साथियों कि हम संतुलित जीवन जिएंगे, अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों का ध्यान रखेंगे और ऐसे विकास को अपनाएंगे जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि विकास वही महान कहलाएगा जो तन मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखेगा।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की है, छोटी मोटी रह गई है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं, लेकिन अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर हाल में सबसे आगे निकलना ही लक्ष्य हो। जीवन एक यात्रा है जिसमें स्वास्थ्य, खुशियां, रिश्ते, संवेदनाएं और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की सफलता।
1: जी जी।
0: यदि विकास की राह पर चलते हुए हमारा शरीर थक जाए, हमारा मन टूट जाए और हमारे रिश्ते बिखर जाए तो वो विकास अधूरा है।

0: ये बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है, कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हां श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे निर्णयों पर और हमारे विषय पर। आज का विषय है, गलत संगति जीवन को कैसे प्रभावित करती है। वो कहते हैं ना श्रोता साथियों, फूलों के बीच रहने वाला धागा भी महकने लगता है और धुएं के बीच रहने वाला कपड़ा भी गंध पकड़ लेता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है, जिस संगति में रहता है धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गलत संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से हमें हमारी संगति का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं गलत संगति जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो श्रोता साथियों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलता है। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ लोग हमें धीरे धीरे गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके मित्रों और उसके साथ रहने वाले लोगों से भी होती है। जी हाँ श्रोता साथियों, संगति का अर्थ केवल मित्रता नहीं है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, वही हमारी संगति कहलाती है। और यह संगति मित्रों की हो सकती है, पड़ोसी की हो सकती है, सहकर्मी की हो सकती है, या आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया की भी हो सकती है। इसलिए संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है साथियों कि हर रोज जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, धीरे धीरे उनकी सोच हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। नहीं अब जाने साथियों कि गलत संगति की शुरुआत आखिरकार होती कैसे है, क्योंकि हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि संगति कैसी होनी चाहिए और संगति का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, तब तक हम अच्छी संगति में नहीं रह सकते। तो अक्सर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत रास्ता नहीं चुनता, शुरुआत बहुत छोटी होती है। कई बार किसी की बातों से प्रभावित होकर, समूह में शामिल होने की इच्छा से, अकेलेपन के कारण या दूसरों जैसा दिखने की चाह में व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है श्रोता साथियों, जो उसे धीरे धीरे गलत आदतों की ओर ले जाते हैं। शुरुआत में हमें ये सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ उसका असर दिखाई देने लगता है और इसका प्रभाव श्रोता साथियों यकीन मानिए धीरे धीरे हमारी सोच पर पड़ने लगता है। संगति का सबसे पहला प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक बनते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही होती जाती है। कहते हैं ना कि गलत संगति सबसे पहले आदतें नहीं बदलती, सोच बदलती है। और जब हमारी सोच बदलती है तो इसका असर हमारे आत्मविश्वास और लक्ष्य पर पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने और लक्ष्य होते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, गलत संगति व्यक्ति का ध्यान उसके उद्देश्य से भटका सकती है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, इतना मेहनत करके क्या ही करेगा, छोड़ो बाद में देखेंगे, जिंदगी तो मजे करने के लिए होती है। यही सारी चीजें हमें बहुत सी बार हमारे दोस्तों के बीच में भी सुनने को मिलती है। तो हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है श्रोता साथियों, क्योंकि अगर कोई हमारा दोस्त इस तरीके की बातें करता है तो हमें दूरी बना लेनी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कार्यक्रम में बताया आपको कि संगति का प्रभाव सबसे पहले हमारी सोच पर पड़ता है, और अगर उसका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है तो हम हमारे लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हम अपने भविष्य को गंभीरता से नहीं ले पाते। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूंगी श्रोता साथियों, कि रास्ते कभी अचानक नहीं बदलते, पहले सोच बदलती है, और सोच बदलने में अक्सर संगति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो साथियों, आपको हमेशा अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, किनसे बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपके जो मित्र हैं वो नकारात्मक चीजों से भरे पड़े हैं, तो आपको वहाँ से दूर हो जाना है, क्योंकि अगर आपकी सोच पर उन गलत चीजों का प्रभाव पड़ा तो आपका जीवन खराब हो सकता है। तो बातें कार्यक्रम में जैसा कि हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया कि रास्ते कभी अचानक नहीं बदलते, पहले सोच बदलती है और सोच बदलने में अक्सर संगति की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ श्रोता साथियों, गलत संगति का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को ऐसी आदतों की ओर ले जा सकती है जो उसके जीवन को नुकसान पहुँचाती है, जैसे कि समय की बर्बादी, पढ़ाई या काम में लापरवाही, झूठ बोलना, अनुशासनहीनता, नशे जैसी हानिकारक प्रवृत्तियाँ। इनमें से कोई भी आदत अचानक नहीं बनती, अक्सर इसकी शुरुआत गलत संगति से होती है। इसी के साथ इन सारी चीजों का प्रभाव जो है श्रोता साथियों, हमारे परिवार और रिश्ते पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति गलत लोगों के साथ रहता है ना, तो उसका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बदलने लगता है। वह परिवार की बातों को महत्व नहीं देता, जिम्मेदारियों से बचने लगता है और घर वालों से दूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है और कई बार परिवार को समझ ही नहीं आता कि ये बदलाव क्यों आ रहा है। तो श्रोता साथियों, हमें ये समझना होगा कि हमारी संगति कैसी हो। युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि युवावस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति सबसे अधिक सीखता है और सबसे अधिक प्रभावित भी होता है। इस उम्र में मित्रों और साथियों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए युवाओं को यह समझना होगा कि मित्र वह नहीं है जो केवल साथ समय बिताए, मित्र वो है जो सही दिशा दिखाए। सच्चा मित्र श्रोता साथियों वही होता है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करे। जो मित्र आपके सपनों को मजबूत करेगा श्रोता साथियों, वही सही मित्र है। अच्छी संगति के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छी संगति हमें बहुत कुछ देती है, जैसे कि अच्छी संगति हमें प्रेरणा देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, मेहनत की आदत सिखाती है, सकारात्मक सोच विकसित करती है और जीवन को सही दिशा देती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। साथियों, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि वाकई में संगति का असर हमारे जीवन पर इस तरीके से पड़ सकता है, तो हमें संगति चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले जीवन में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह यह तय करे कि उसे किन लोगों के साथ रहना है। संगति चुनते समय आपको सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्या यह व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या नहीं, क्या इसके साथ रहने से मेरे व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है या नहीं, क्या यह मेरे सपनों और मूल्यों का सम्मान करता है। यदि जवाब हाँ है तो वह संगति लाभदायक है। जी हाँ श्रोता साथियों, एक अच्छा समाज तभी बनता है जब उसके युवा सही दिशा में आगे बढ़े, और सही दिशा केवल शिक्षा नहीं अच्छी संगति से भी मिलती है। परिवार, विद्यालय और समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को ऐसे वातावरण से जोड़े जहाँ सकारात्मक सोच, मेहनत और जिम्मेदारी को महत्व दिया जाए। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन की दिशा तय करने में संगति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गलत संगति धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करती है। कई बार व्यक्ति को इसका एहसास ही नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों का सम्मान करें और सही राह पर आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं आती है साथियों, सही दिशा से भी मिलती है, और सही दिशा चुनने में संगति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि संगति बीज की तरह होती है जो धीरे धीरे व्यक्तित्व बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपके भीतर की अच्छाइयों को और मजबूत करे। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी, लेकिन श्रोता साथियों जाने से पहले मैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आपके अपने दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों, प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों,
0: और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि श्रोता साथियों, जब भी हम आपसे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम आपसे बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे ही एक महत्वपूर्ण नए विषय को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। साथियों, आज का जो हमारा कार्यक्रम के माध्यम से विषय है वो है कि जब कभी हमारा अपमान हो जाता है तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। हम देखते हैं मनीषा की वर्तमान में अपमान होना और किसी का कह सकते हैं कि मजाक उड़ाना एक सामान्य बात मानी जाती है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो ये सामान्य नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे श्रोता साथियों से इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे कि जब हमारा अपमान हो जाता है तो हमें उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि अगर हमारा खुद पर विश्वास है तो कोई भी समस्या हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो बातें ढेर सारी होने वाली है आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को हम कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं, जब कभी हमारा अपमान हो तो उससे हमें विचलित नहीं होना है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मानव जीवन में सम्मान और अपमान दोनों ही परिस्थितियाँ आती रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है साथियों।
1: जी हाँ,
0: कभी कभी हमें आलोचनाओं, तिरस्कार, उपेक्षाओं या अपमान का सामना करना पड़ता है। श्रोता साथियों, ऐसी स्थिति में बहुत निराशा में हम डूब जाते हैं, जबकि वास्तविकता श्रोता साथियों यह ही कि अपमान जीवन का एक हिस्सा है और इसे घबराना या विचलित होने के बजाय हमें समझदारी और धैर्य के साथ उसे स्वीकार करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। सम्मान श्रोता साथियों मनुष्य की एक स्वाभाविक आवश्यकता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम गुस्से से भर जाते हैं साथियों।
0: बिल्कुल,
1: हमें नीचा दिखाने का अगर कोई प्रयास करता है तब हमारा मन दुखी हो जाता है। कई बार अपमान के कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं मनीषा, जो हमारे मन पर इतने गहरे प्रभाव छोड़ जाते हैं कि लंबे समय तक हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। लेकिन श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य ये भी है कि अपमान से घबराना या विचलित होने के बजाय हमें उससे सीखने और स्वयं को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही सच्ची सफलता का मार्ग है। देखते हैं कि अपमान जीवन का एक ऐसा अनुभव होता है जिसमें लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी तो गुजरता ही है, चाहे वह विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो या व्यापारी हो, या फिर कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। मनीषा, हर किसी को आलोचना या फिर अपमान का सामना तो करना ही पड़ता है अपने समय में। इसलिए अपनापन और कह सकते हैं श्रोता साथियों कि अपमान को जीवन का अंत नहीं हमें मानना है, बल्कि एक अनुभव मानना चाहिए जो हमें मानसिक रूप से अधिक परिपक्व बनाएगा।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि महान व्यक्तियों के जीवन में भी अगर हम देखते हैं तो श्रोता साथियों पाएंगे कि उन्होंने भी कई सारे अपमान सहा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन उससे उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं समझा उन्हें, लेकिन उसी अपमान को अपनी शक्ति और प्रेरणा में बदलकर सफलता प्राप्त की।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, जब कभी हमारा अपमान हो तो हमें विचलित होने के बजाय आत्मसंयम और सकारात्मक सोच के साथ उसे स्वीकार करना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है साथियों तो सबसे पहले हमारे मन में क्रोध ही आता है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि हमें ऐसा लगता है मनीषा कि सामने वाले को हम तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, यही वह समय होता है जब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। जैसे कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकता है श्रोता साथियों, यदि हम अपमान के शरण में स्वयं को शांत रख सके तो हम स्थिति को अधिक समझदारी से संभाल सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: जैसा कि आपने भी बताया कि महान व्यक्तियों के जीवन में भी कई कह सकते हैं कि

0: संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ा, कई अपमान का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उन्होंने श्रोता साथियों कभी भी अपमान को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
1: जी हाँ,
0: बल्कि उन्होंने उसे अपनी शक्ति बनाया है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में श्रोता साथियों अगर अपमान का सामना करना पड़ता है तो हमें उससे विचलित न होकर उसे अपनी चुनौती या फिर चैलेंज मानकर जीवन में अपनाना चाहिए। फिर आप खुद ही श्रोता साथियों ये परिवर्तन देखेंगे कि आपको अपमान और आलोचना जो है वो बुरी नहीं लगने लगेगी।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि अपमान श्रोता साथियों वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति के आत्मसंयम या भावनाओं को हम ठेस पहुंचाते हैं, या किसी के शब्दों व्यवहार उपेक्षाओं आलोचना के माध्यम से भी श्रोता साथी हो सकता है। कई बार कशिश हम देखते हैं कि लोग जानबूझकर अपमान करते हैं और कई बार अनजाने में भी श्रोता साथियों ऐसा हो जाता है। अपमान का अनुभव व्यक्ति को दुखी क्रोधित और निराशा में ला सकता है। लेकिन श्रोता साथियों यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपमान केवल बाहरी घटना नहीं है, इसका प्रभाव हमारे मन पर कितना होगा यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बहुत अच्छी कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो भी हमारे श्रोता साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ,
0: कि जब कभी हमारा अपमान हो श्रोता साथियों तो हमें उस अपमान से विचलित नहीं होना है। तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे इस विषय से जुड़ी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है कि जब कभी भी कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उससे विचलित नहीं होना है।
1: जी हाँ,
0: अगर इसी में हम हमारी बात को आगे बढ़ाएं मनीषा, तो देखते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है साथियों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें उस व्यक्ति को जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। हम देखते हैं कि अपमान से विचलित न होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के भी राय बना लेते हैं मनीषा, और कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों को अपने दिल पर लेना उचित बात नहीं है साथियों। यदि हम हर नकारात्मक टिप्पणी से प्रभावित होने लगेंगे तो हमारा आत्मविश्वास इससे धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में भी अंतर समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आत्मसम्मान हमें अपने मूल्य का एहसास कराता है, जबकि जो अहंकार है मनीषा, वो हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझने की कोशिश में लगा रहता है। साथियों, जब हमारा आत्मसम्मान मजबूत होता है तब किसी का अपमान हमें आसानी से तोड़ नहीं पाता।
1: बिल्कुल,
0: हम जानते हैं कि हमारी पहचान दूसरों की बातों से नहीं बल्कि हमारे चरित्र और कर्मों से ही बनती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब हम स्वयं को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं तब किसी की छोटी सी आलोचना भी हमें अपमान लगने लगती है। हमारा अहंकार आहत होता है श्रोता साथियों, और हमें मानसिक रूप से परेशान करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है साथियों, वे भी दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। किसी के अपमानजनक शब्द उसके मन में लंबे समय तक घर कर जाते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, हमें समाज का डर भी होता है। कई बार हमें इस बात का डर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यही डर हमारे अपमान को अधिक कष्टदायक बना सकता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है वे भी अपमान की स्थिति से जल्दी विचलित हो जाते हैं। साथी कशिश, हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी अपमान का सामना नहीं करना पड़ा हो। श्रोता साथियों, चाहे वो कोई साधारण व्यक्ति हो या कोई महान नेता, वैज्ञानिक या कलाकार या समाज सुधारक क्यों ना हो, हर किसी को कभी न कभी आलोचनाओं और अपमान को सहना पड़ता है। श्रोता साथियों, अपमान जीवन की परीक्षा है। यह हमें सिखाता है कि हम मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। यदि हम हर अपमान पर टूट जाएंगे कशिश, तो जीवन में कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
0: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। श्रोता साथियों, कई बार अपमान हमारे लिए आत्मविश्लेषण का अवसर भी बन सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आलोचना में कुछ सच्चाई है मनीषा, तो हमें उसे स्वीकार करने और स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: साथियों, सुधार की भावना हमें आगे जरूर बढ़ाती है। जैसे कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है वह जीवन में अधिक सफल होता है। अगर बात करें तो अपमान का सबसे अच्छा उत्तर सफलता होती है साथियों।
1: जी हाँ,
0: ना कि उस अपमान का जवाब उसी समय देना। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं ना, तब लगातार मेहनत हम करते रहते हैं, तब धीरे धीरे मनीषा वही लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं जिन्होंने कभी हमारा मजाक उड़ाया था, हमारा अपमान किया था।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए साथियों, समय और ऊर्जा को क्रोध में नष्ट करने के बजाय अपने विकास में लगाना आपके लिए लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि हर अपमान बुरा नहीं होता। कभी कभी आलोचनाओं के पीछे सच्चाई भी छुपी होती है। श्रोता साथियों, यदि कोई हमारी गलती की ओर ध्यान दिला रहा है तो हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: समझदार व्यक्ति अपमान को सीख के रूप में लेता है कशिश, जबकि कमजोर व्यक्ति होता है वो केवल दुखी होकर बैठ जाता है।
0: जी हाँ,
1: यदि हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधार ले साथियों, तो वही अपमान हमारे विकास का कारण बन सकता है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें श्रोता साथियों, तो आपको बताना चाहेंगे कि मानसिक मजबूती विकसित करना भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि मनीषा ऐसा बताया जाता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वह कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहना जानते हैं। साथियों, उन्हें अपमान, असफलता और आलोचना उनके आत्मविश्वास को कभी तोड़ नहीं पाती है, और मानसिक मजबूती नियमित सकारात्मक सोच, अच्छे साहित्य के अध्ययन, योग ध्यान और अच्छे लोगों के साथ रहने से ही विकसित होगी। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में अपमान और आलोचना का स्वरूप बदल चुका है। कई बार लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी नकारात्मक बातें कह देते हैं। ऐसे समय में श्रोता साथियों, हमें यह समझने की जरूरत है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन भी सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कहा जाता है साथियों कि सबसे अच्छा बदला सफलता है। यदि कोई हमारा अपमान करता है तो उसे लड़ना या बहस करने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी जी।
1: कशिश, हम देखते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं और लगातार प्रयास करते हैं तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, और जिसे सफलता प्राप्त हो जाती है श्रोता साथियों, वह अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहता है। और जो लोग खुद की आलोचना या दूसरों की आलोचना कर रहे थे वो भी हमारी प्रशंसा करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा श्रोता साथियों, अपमान सहना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी परिपक्वता की निशानी है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है साथियों कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए,
1: जी
0: बल्कि
1: हाँ।
0: इसका मतलब तो ये होगा मनीषा कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सही समय और सही तरीके की बात को अपनी रखें।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, यही संयमित व्यक्ति की निशानी होती है, और जो संयमित व्यक्ति होता है वो हमेशा सम्मान ही प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब लोग हमारी योग्यता पर संदेह करते रहेंगे। साथियों, वे कहते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते, ऐसे शब्द भी एक प्रकार का अपमान ही होता है। लेकिन यदि हम इन बातों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर ले, चैलेंज के रूप में स्वीकार कर ले, तो यही बातें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी मनीषा।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.1।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी, जब कभी हमारी आलोचना हो तो हमें उससे विचलित नहीं होना है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि अपमान के बाद अक्सर हमें क्रोध उत्पन्न होता है हमारे अंदर, लेकिन श्रोता साथियों क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है।
1: जी हाँ,
0: क्रोध में लिया गया निर्णय श्रोता साथियों अक्सर गलत साबित होता है। इसीलिए अपमान के समय स्वयं को शांत रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अगर आपका अपमान होता है तो उस समय आपको गहरी सांस लेनी है, कुछ समय अकेले रहना है और सकारात्मक सोच को अपनाना है। इससे श्रोता साथियों अगर आप ये सब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगी, यदि किसी व्यक्ति का अपमान हुआ हो तो परिवार और समाज उसका मनोबल बढ़ाता है। उसे यह समझाना चाहिए कि जीवन में ऐसी घटनाएं सामान्य हैं और उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार का सहयोग व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: और कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी सिखाता है।
1: आपने सही कहा मनीषा, और जैसा कि गीत से पहले भी हमने हमारे साथियों को बताया था कि अपमान सहन करना कमजोरी नहीं होती बल्कि परिपक्वता की निशानी होती है। साथियों देखते हैं कि जीवन में हमारे ऐसे अनेक अवसर आने वाले हैं जहां पर हमें अपमान का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसे में जैसा कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं कि कोई हमारी आलोचना भी क्यों ना कर रहा हो, हमें अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, बल्कि हम जिस लक्ष्य के लिए अग्रसर हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम एकाग्र रूप से तैयार हैं, तो हमें उसी कार्य को करते रहना है। श्रोता साथियों
0: जी हाँ,
1: इसलिए जब कभी आपका अपमान हो तब आप स्वयं से ये प्रश्न पूछिएगा जरूर कि क्या मैं इस घटना से कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, क्या मैं इससे और बेहतर बन सकती हूँ। यदि श्रोता साथियों आपके मन ने उत्तर हाँ दिया तो अपमान हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि विकास का साधन बन जाएगा।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि अपमान के क्षण में धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और आत्मसंयम हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं मनीषा। जो व्यक्ति इन गुणों को अपना लेते हैं वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना अपने आप ही करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वह ये बात जानते हैं कि दूसरों की नकारात्मक बातें उनकी वास्तविक पहचान तय नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की आलोचना कर देते हैं। कई युवा नकारात्मक टिप्पणी से परेशान हो जाते हैं। श्रोता साथियों युवाओं को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को खुश रहना, उसका खुश रहने के लिए उसकी जिंदगी में उसे समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य और अपने सपनों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है।
1: जी जी,
0: साथ ही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अपमान जीवन का एक ऐसी वास्तविकता है जिसे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अपमान से विचलित होना या टूट जाना हमारे लिए समाधान नहीं है।
1: जी हाँ,
0: हमें इसे धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ हमें स्वीकार करना है। अपमान को अपनी कमजोरी नहीं साथियों बल्कि अपनी शक्ति बनाना चाहिए। मान लोग भी वही होते हैं श्रोता साथियों जो कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए कशिश कहना चाहेंगे कि जब कभी हमारा अपमान हो तो हमें क्रोधित, निराशा और हताशा में डूबने के बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, अपने लक्ष्यों पर दृढ़ता से केंद्रित रहना चाहिए। याद रखिए साथियों, अपमान क्षणिक होता है लेकिन उससे मिलने वाली सीख और उससे प्राप्त होने वाली सफलता हमें जीवन भर के लिए सम्मान दिलाती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। ऐसे में श्रोता साथियों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि दुनिया में हर व्यक्ति को खुश रखना आपके द्वारा संभव नहीं हो पाएगा।
0: जी हाँ,
1: कुछ लोग आपकी सफलता से प्रसन्न होंगे साथियों, तो कुछ लोग आपको ऐसे में मिलेंगे अपने जीवन में जो आपकी आलोचना ही करते रहेंगे। इसलिए दूसरों की राय से अधिक महत्व अपने चरित्र, अपने कर्मों और अपने लक्ष्यों को दीजिए। जब साथियों हमारा ध्यान अपने विकास पर होता है ना, तब अपमान की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। इसलिए अपमान को अपने मन पर बोझ बनाने के बजाय उसे एक सीख, एक अनुभव और एक प्रेरणा के रूप में बदल दीजिए, और यही आपके जीवन को सफल, संतुलित और सार्थक बनाने का सर्वोत्तम मार्ग होगा। श्रोता साथियों
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन में सम्मान पाना हर व्यक्ति का स्वाभाविक इच्छा होती है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है श्रोता साथियों तो हमारा मन ही वो प्रसन्न हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कशिश जब हमारा अपमान करता है कोई तो हमें अपेक्षा लगती है।
1: जी जी,
0: हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तब हमारा मन ही वो दुखी हो जाता है। श्रोता साथियों कई बार लोग अपमान को इतना गंभीरता से ले लेते हैं कि उसका आत्मविश्वास है वो भी कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: वे अपने आप को असफल असफल समझने लगते हैं। जबकि श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि अपमान किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि वह परिस्थिति होती है साथियों, जो समय के साथ बदलती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान से डरने के बजाय उसे अपना विश्वास और आत्मविश्वास समझता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो अपने विकास का सुधारक मार्ग मानता है। जीवन में श्रोता साथियों, आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने अपमान से विचलित होने के बजाय उसे सीखे, मानसिक रूप से मजबूत बने।
1: जी हाँ मनीषा, इसी के साथ साथियों, जीवन में कुछ अपमान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति के भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाने का काम करते हैं। जब कोई हमारी योग्यता पर प्रश्न उठाता है साथियों, और हमारी मेहनत को कम आंकता है, हमारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तब हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये कि हम निराश होकर बैठ जाएं, और दूसरा श्रोता साथियों ये कि हम फिर से खड़े होकर स्वयं को साबित करने की कोशिश करें।
0: जी हाँ।
1: मनीषा, जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, यानी कि स्वयं को साबित करना चाहते हैं, वही इतिहास रचते हैं। इसलिए अपमान को दोस्तों अपने विकास की ऊर्जा में बदलना आप सीखिए। कई बार क्षणिक क्रोध हमें ऐसे शब्द बोलने के लिए मजबूर कर देता है जिनसे पुराने वर्षों के संबंध भी टूट जाते हैं। अपमान का दर्द जितना बड़ा हो सकता है साथियों, उतना ही बड़ा नुकसान और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भी हो सकता है। इसलिए किसी के व्यवहार से दुखी होने पर आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बल्कि थोड़ा समय ले लें। समय बीतने के बाद मन शांत होता है और हम स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। मनीषा
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि अपमान का सकारात्मक पक्ष श्रोता साथियों यह भी होता है कि हम स्वयं को परख पाते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें देखने का मौका मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: क्या वास्तव में हमारे अंदर कोई कमी है। यदि श्रोता साथियों आलोचना सही है तो हमें उसे स्वीकार करना और सुधार करना हमारे लिए जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों आलोचना है जो वो गलत है तो उसे अनदेखा करना भी हमारे लिए जरूरी है। इसी प्रकार हमें स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। साथी श्रोता साथियों, अपनी पहचान दूसरों की राय से आप बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो दूसरों के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, कहते हैं ना कि हमें अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए अगर आपको भी, आपके आसपास भी ऐसे लोग अगर आपको दिखते हैं, तो आप खुद ही उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण होते हैं साथियों। यदि हम अपनी पहचान लोगों की प्रशंसा और आलोचना के आधार पर तय करने लगेंगे, तो हमारा मन तो कभी स्थिर रह नहीं पाएगा।
0: जी हाँ।
1: आज कोई दोस्तों हमारी तारीफ कर रहा है, कल वही व्यक्ति हमारी आलोचना भी कर सकता है। इसलिए अपनी पहचान, अपने मूल्य और अपने कार्यों को, साथ ही अपने चरित्र को श्रोता साथियों किसी के आधार पर मत बनाइए, अपने आधार पर, स्वयं के आधार पर बनाइए, और साथ ही स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ही लीजिए श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे विद्यालय में श्रोता साथियों परीक्षा ज्ञान को परखने के लिए होती है, वैसे ही जीवन हमारी वैसे ही हमारा जीवन है, उसमें भी सहनशीलता और मानसिकता की परीक्षा होती है हमारे अपमान से।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य बनाकर रखता है, वही आगे चलकर श्रोता साथियों मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण कर पाता है।
1: जी,
0: कठिन परिस्थितियों में ही व्यक्ति का चरित्र ही कशिश वो सबके सामने आता है। यदि जीवन में केवल श्रोता साथियों प्रसन्नता ही मिलती रही, तो कोई भी व्यक्ति कमजोरियों का सामना करना नहीं सीख पाएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है कि जब कोई हमारा अपमान करता है, तो हमें क्रोध में आने के बजाय या फिर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय शांत होना पहले जरूरी है, विचलित नहीं होना है हमें।
0: जी हाँ।
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से जुड़ चुके हैं। बातें जैसा कि दोस्तों बहुत अच्छी चल रही थी गीत से पहले भी और ढेर सारी हो चुकी है, हम बात कर रहे थे अपमान को अवसर बदलने की कला को लेकर।
1: जी हाँ।
0: और जैसा कि आज का जो विषय है श्रोता साथियों वो है कि जब कभी कोई हमारा अपमान करता है तो अक्सर हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं या फिर उसे जवाब दे देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें विचलित नहीं होना है बल्कि धैर्य के साथ काम लेना है।
1: जी हाँ।
0: अब यहीं अगर इस बात को आगे बढ़ाए मनीषा, तो ऐसा कहा जाता है कि अपमान हमें विनम्र भी बनाता है। श्रोता साथियों, लगातार सफलता मिलने पर कभी कभी व्यक्ति के भीतर अहंकार आने लगता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे समय में जीवन की कुछ घटनाएं उसे वास्तविकता का एहसास कराती है। अपमान का अनुभव हमें ये सिखाता है मनीषा कि जीवन में हमेशा सीखते रहना हमें चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि विनम्रता व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है। साथियों, आपने देखा ही होगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब किसी के धैर्य और व्यक्तित्व की वास्तविक परीक्षा नहीं होती।
1: जी हाँ।
0: असली परीक्षा तभी होती है जब व्यक्ति आलोचना, असफलता और अपमान का सामना करता है। ऐसे समय में मनीषा जो व्यक्ति संयम रखता है वही मजबूत चरित्र का निर्माण कर पाता है। चरित्र की यह मजबूती भविष्य की बड़ी चुनौतियों को संभालने में सहायता करती है।
1: बिल्कुल कशिश, यही अब बात आती है कि अपमान के बाद हम स्वयं को कैसे संभालें। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि कुछ समय के लिए हमें शांत रहना है।
0: बिल्कुल।
1: किसी विश्वसनीय व्यक्ति या किसी अच्छे घर में कोई हमारी बात को समझ सके वैसे व्यक्ति से हमें अपनी बातों को साझा करना है।
0: जी हाँ।
1: अपने अच्छे गुणों को श्रोता साथियों याद करें, साथ ही नकारात्मक विचारों से दूरी बना के रखें, अपने लक्ष्यों पर काम करें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, स्वयं को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करें। श्रोता साथियों, के छोटे छोटे कदम ही जो अपमान से हमारे मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और सेवा की भावना से प्राप्त होता है।
0: जी हाँ।
1: जो व्यक्ति कशिश दूसरों का सम्मान करता है उसे भी सम्मान मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए साथियों, यदि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें अपना अच्छा व्यवहार उससे करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिससे हम देखते हैं कि हमारा चरित्र है वो अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें कि समाज में सकारात्मक वातावरण बनाना क्यों जरूरी है, तो दोस्तों हमें ये स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपमान का कारण न बन जाए। सम्मान देना और सम्मान प्राप्त करना दोनों ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं मनीषा कि एक स्वस्थ समाज वही होता है जहां लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे, उनका मनोबल बढ़ाते रहे और उनकी कमियों का उपहास उड़ाने के बजाय उन्हें सुधारने में कह सकते हैं कि सहयोग दें। श्रोता साथियों, जो लोग अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रखते हैं वे छोटी छोटी आलोचनाओं पर समय बर्बाद कभी नहीं करते। उनका पूरा ध्यान अपने काम पर होता है, अपने सपनों पर होता है और अपने भविष्य पर होता है।
1: जी हाँ।
0: कारण से वे लगातार आगे ही बढ़ते रहते हैं और सफलता प्राप्त करते रहते हैं मनीषा। अपमान उनकी गति को रोक नहीं पाता बल्कि उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों कहना चाहेंगी कि अपमान जीवन की एक ऐसी घटना है जो कभी भी घट सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कमजोरी के साथ अपनाते हैं या शक्ति के साथ में। यदि हम अपमान को दिल से लगाकर बैठ जाएं श्रोता साथियों, तो वह हमें दुख और निराशा देगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, यदि हम उसे सुख और प्रेरणा में बदल दें तो वही घटना हमारे विकास का कारण भी बन सकती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, जब भी जीवन में अपमान का सामना हो तो हमें धैर्य रखना है, स्वयं पर विश्वास बनाकर रखना है। और श्रोता साथियों, याद रखिए कि किसी के शब्द आपकी क्षमता को निर्धारित नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: आपका भविष्य आपके कर्म, आपके मेहनत और सकारात्मक सोच यह तय करते हैं कि न आप किसी के अपमान के लायक हैं और ना ही कोई आपका अपमान कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: आप क्या हैं वो आप ही जानते हैं।
0: जी बिल्कुल मनीषा, आपने ये बात सही कही। साथ ही हमारे श्रोता साथियों को मौन की शक्ति को भी समझना चाहिए। वो कैसे श्रोता साथियों, तो हर अपमान का उत्तर शब्दों में देना जरूरी नहीं होता।
1: जी।
0: कभी कभी शांत रहकर आगे बढ़ जाना और सबसे बड़ी बात को अपने अंदर ही रख देना, ये भी समझदारी की बात होती है। मौन जो है वो व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। ये कमजोरी नहीं होता बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति का प्रतीक होता है। साथियों, जब हम अनावश्यक विवादों से बचते हैं तब हमारी मानसिक शांति बनी रहती है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि लगातार सफलता मिलने पर कभी कभी व्यक्ति के अंदर अहंकार भी आ जाता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है।
1: जी हाँ।
0: और जब हमारे अंदर अहंकार होता है मनीषा, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन यानी कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता जरूर है। अगर हम अहंकार को ही लेकर बैठे रहेंगे और किसी की मदद नहीं लेंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है श्रोता साथियों जो किसी और की मदद के बिना, किसी और की सलाह के बिना नहीं होता हो। हमें सलाह की आवश्यकता होती ही है, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आपको भावनात्मक रूप से परिपक्व होना होगा। क्योंकि भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति समझता है कि हर व्यक्ति की बात का महत्व समान ही होता है। वह ये पहचान सीख जाता है मनुष्य की किस सलाह को स्वीकार करना है और किसकी नकारात्मक टिप्पणी को अनदेखा करना है।
1: बिल्कुल,
0: ये समझ श्रोता साथियों जीवन को अधिक सरल और संतुलित बनाती है। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि अपमान जीवन की एक ऐसी परीक्षा है जो हमारे धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को परखती है।
1: जी हाँ,
0: जो व्यक्ति मनुष्य अपमान से टूटने के बजाय उससे सीखने का प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। साथियों, दूसरों के शब्द हमारी वास्तविक पहचान नहीं होते बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा चरित्र ही हमें महान बनाते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
0: नमस्कार।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बागपत से। फिल्म का नाम है कन्यादान, गीत के बोल हैं लिखे जो खत तुझे। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और शशि कपूर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आशिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है बलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा जी शर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चनाताई घोड़ाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गोड़ाने। इस गीत के अनुरोध करता है हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जनित और गुरप्रीत जी हो। पंजाब से जुड़ना चाह रहे हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा। पंडियापुर सिटी से जुड़ रहे हैं जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबू बी मुलानी, बादशाह जी मुलानी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़की जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं लिखे जो खत तुझे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडितपुर सिटी से। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल हैं सुनमितवा। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश जी मुणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानू, इलिजा नायाब और लड्डू जी। भागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापति, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नितुन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन वर्मा, मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बीबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेताजी वर्मा। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सुनमितवा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजड़वारा से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत की बोल ही भंवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिसाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य, छत्रपति शिवाजी नगर से, राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय जी, इसे भी जुन्नाचार्य छत्तीसगढ़ से, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। मुरादाबाद से जुड़ रही अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। मजनू कटीला से जुड़ना चाह रहे हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रहे हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, महेशी मलिक और महेश मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरबेन शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। कोका बलाई से जुन्नाचार्य, उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि ओशिका जंगेल, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही भंवरे ने खिलाया फूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सदर बाजार कुरावली से। फिल्म का नाम है मन, गीत के बोल ही चाहा ही तुमको। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी और अनुराधा पोडवाल जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा और सनम जी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी जी और हिमांश जी। बाबा कुटरी रायगढ़ से जुड़ रहे हैं शिव कुमार चौहान, आशीष और संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष जी चौहान। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। रतलाम एमपी से जुड़ रहे हैं जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोले हैं चाहा है तुमको। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जाकुत राजस्थान से। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना है, गीत की बोल है बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। इस गीत की फरमाइश करता है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जाफराबाद से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, कुमारी प्रथमेश देशमुख, कुमारी सरवत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली प्रसाद वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोमो और मानस जी राज। इस गीत के अनुरोध करता है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा और ईशान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशी शेख, नाजिया नाशी, शाहिद शेख। अहमदनगर से जुड़ना चाह रहे जुमेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिखाइल जी मुजावर और जुमेद जी मुजावर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झारखंड से। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, गीत की बोल है मैंने पूछा चांद से। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चिंपा। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जी नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे दादरीगढ़ भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। इस गीत के अनुरोध करता है बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। दुरापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरा, नरगिस जी खातून। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ जी गोड़ानी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैंने पूछा चांद से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा से। गीत के बोले बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। इस गीत को आवाज दी है लता जी और मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आशीन हाशमी, नवजा बेगम, तौसीफ तोइनूर जी और कलीम अंसारी जी। और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत्रमेश शाहू जी। डुमराव से बिहार से जुन्नाचार्य हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बाजार बक्सर से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद जी आर्य। और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य हैं बक्सर से राजेडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इसी बीच जुन्नाचार्य सहारनपुर से समियत मशरूम, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी और अदीब जी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बेखदी में सनम उठ गए जो कदम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत की फरमाइश करता है नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, राडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही है पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुक्कू सिक्का और भाविका जी सिक्का। इसी बीच जुन्नाचार्य नरवेल महाराष्ट्र से, पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, सोपान नारायण जी और आशीष महेकर जी। इस गीत की अनुरोध करता है कुंभार गली श्रीरामपुर जी, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका जी दली। पुनावली पुणे से जुन्नाचार्य हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मुझे दिल को डुबा दीजिए। इसी प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार कीजिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम जब भी आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो आपको आपके ही द्वारा भेजे गए पसंदीदा नगमों से रूबरू करवाते हैं, जो आप हमें व्हाट्सएप SMS के माध्यम से भेजते हैं। और कार्यक्रम आपकी फरमाइश का जो सिलसिला है वो हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। तो जैसा कि आज भी ये सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ था साथियों, जैसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो श्रोता साथियों, बिना देरी किए फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आया है। फिल्म का नाम है तेरे नाम, गीत के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। इस गीत को आवाज दी उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता है ताजवद अंसारी गुलाम शाह भी रही महराज जहां जी। डाबकी रोड अकोला से है शिशिरा देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार। पुनावली से जुड़ रहे हैं अजय सोनवाने, करिश्मा सोनवाने, अविका सोनवाने, शायसा सोनवाने जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच श्रोता साथियों जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, नीता जादव, आरती प्रसाद जादव, सोनल जादव, बीबी सिया जादव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ जादव, संगीता जादव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था ओढ़नी ओढ़ के नाचू, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत के बोल हैं, बे इरादा नजर मिल गई तो। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट और मधुसूदन भट्ट जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं, कमलकांत मरावी, प्रवीणा मरावी, नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। गंजुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, याशिन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, बे इरादा नजर मिल गई तो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों पोटाकला दुर्ग से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। इस गीत को आवाज दी अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता है पोटाकला दुर्ग से संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, काजल सीमा, मनवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहनितिक, बलवीर सिंह जी, पटेल नगर मोहल्ला से रमेश कुमार जजोरिया, गीतरिन जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू जी। कुंभार गली गोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। अनारकली बाजार जगराव से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव जी। साथ नरसिंहगढ़ से हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद विष्णु, मुस्कान विष्णु, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। जुड़ना चाह रहे करनाल से सुदरनूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इश्पी शर्मा, हरप्रीत कौल, किरण ठाकुर, किरण गुप्ता और शशि बालाजी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की इस फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथी, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है चौकनटी बुलंदशहर से। फिल्म का नाम है दोस्तों मृत्यु दंड। गीत के बोल हैं, कह दो एक बार सचना। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं चौकनटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सिद्धवासी, निगहत पवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरसान अब्बासी और अब्बान अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण भी जुड़ रहे हैं। इसी बीच श्रोता साथी हैं, अस्तपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी, गाजीपुर से आज़ाद अली अजवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आज़ाद, मलकापुर महाराष्ट्र से हैं शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, सप्पल धाड़े, अजय खिरोडकर। साथियों गंजुड़वाड़ा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना ना, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी दोस्त हमारे लोनी से जुड़ रहे हैं, नस्ली इस्लाम गनोरी, प्रकाशवीर राजपूत जी, बालोद से कमलेश जयपुरिया, खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी, रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र कुमकुम मिश्रा और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गुजरात से हैं बेगम प्रमिला प्रदीप, बेगम अनुप्रीत प्रदीप, हेमा प्रदीप जी। बुलंदशहर से नरेंद्र कुमार डोम, सरिता बन्ना, प्रभा बन्ना, डोली अंजलि डोम। बालोद से हैं सुनील कुमार, आशा देवी, राजिंदा गांव से है रविशंकर जयपुरा, प्रभा फरजू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, कह दो एक बार सचना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, दोस्तों बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा, कमल उमा, खंडवा से राधिका अनिता, सपना और राकेश ताई, रायगढ़ से निशा डोमिन, उमा डोमिन, जानवी डोमिन, सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव, नरेंद्र यादव। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। डुमराव से है वलीउल्लाह अंसारी, अजमाराज अंसारी, शबनम बानो, बक्सर से एजिराज अंसारी, खातून अंसारी। इसी बीच और भी श्रोता साथी अमरावती महाराष्ट्र से हैं श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई वीर सिंह वरवाल, सुखवीर रखेट वरवाल, कृष्णा जी, छिंदो जी और प्रवीण शीतल, नवीन अंगीला, निशानंद मूल, प्यारा बेटा, चटकू मटकू, महावीर गीता मलकट। बरका खाना से अफजाल ताज, सोहन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, अफजल मलिक। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा चल रहा है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से बनी हुई है साथियों हमारी आपसे, इसी बीच में अनुमति चाहूंगी फिर से अगली फरमाइश की ओर बढ़ने की। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है गंजू द्वारा से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी, गुलामी। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन मुकुम्बर रंजिश। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू पप्पी भाटिया और भी दोस्त से जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से हैं बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। इसी बीच मरियार मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं मलियान से अनिल जैन, संयम जैन मास्टर और मुस्कान जैन जैन साहब जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जिहाले मस्किन। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, जी हाल मस्किन मुकुम्बर रंजिश। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत है मलयान सरदार मेरठ से आया है। अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पव्य जैन, अंशिका जैन, इन श्रोताओं की फरमाइश है मोहब्बत फिल्म का गीत पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर। फरमाइशकर्ता और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। धनोरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, अयान बाबू जी। महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मेहतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी कुलथे जी। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी दोस्त हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासिन नंजा, सामन नवाज, असन नवाज, बाबू ऐत, मिफ्रानाज, बेबी चाहत। छत्तीसगढ़ से हैं मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। और भी दोस्त इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई गुड़ाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्ध, प्रतिभा गुड़ाने जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पैरों में बंधन है पायल ने मचाया शोर।
1: अब ये झुकने वाली नहीं,

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत तेलीपाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया है। फिल्म का नाम है कलंक। गीत के बोल भी यही है, कलंक नहीं इश्क है ये पिया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमो, मानस राज, गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, ऐश्रीवास। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, फजिल का पंजाब से, भूषण खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खड़, तिवानशी खेड़ा। इसी बीच जुड़ रहे हैं बदायूं से इसत खान, सारा बेगम, रहबूब खान, साविन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान, आजम खान, अरहान खान। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ रहे हैं और भी श्रोता साथी, राजेश कुमार मेहरा, नंदकिशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्रामवासी परिवार सदस्यगण, ये झालावाड़ राजस्थान से जुड़ रहे हैं। अकलकोट से हैं शाबिर गोलंदाज, महबूब सैयद, जहांगीर गोलंदाज, जेबुन गोलंदाज और गोलंदाज परिवार सदस्यगण। साथियों और भी दोस्त हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, बेबी सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्र डावर, आयतरा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। झारखंड से अब्बास आलम, अजमत आलम और नीसा और सभी मित्रगण सदस्य जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मगनपुर से हैं मैजिन बेबी और अहमजद अब्बास जी। बिलासपुर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, विदही जोशी, अविंशिका जोशी, अंकिता जोशी और जयवंती केवट मध्य प्रदेश से हैं, गफार डावर जी। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कलंक नहीं इश्क है पिया। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश महाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:00। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:00। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थई जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
6: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
6: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
6: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि युवाओं में चिंता के क्या नुकसान होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम बात करते हैं कशिश, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, और ये विषय है चिंता या एंजाइटी के नुकसान।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, चिंता करना एक सामान्य मानवीय भावना है। परीक्षा हो, नौकरी का इंटरव्यू हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के कारण कभी कभी चिंता होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब यही चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है कशिश और हमारे जीवन पर हावी होने लगती है, तब ये एंजाइटी का रूप ले लेती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत सारे युवा, विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग और यहाँ तक कि बच्चे भी चिंता की समस्या से जूझ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझते हैं कि अत्यधिक चिंता हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो बातें ढेर सारी होंगी इस कार्यक्रम में इस विषय को लेकर, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम युवा साथियों को पहले मनोरंजन करवाते हैं गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना अभी एक प्यारा सा गीत सुन ले और फिर हमारी बातचीत की शुरुआत करें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं युवाओं में एंग्जायटी यानी कि चिंता और भय होने के नुकसान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था जागृति जी युवा साथियों को कि आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई युवा साथी चिंता में होते हैं। दोस्तों, कई बार हम स्वयं भी नहीं समझ पाते हैं कि हम इतने परेशान क्यों हैं।
1: जी हाँ,
0: उनके भीतर जो बेचैनी, डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना होती है उन्हें हम एंग्जायटी कहते हैं साथियों।
1: जी हाँ,
0: इसका प्रभाव केवल मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि शरीर, शिक्षा, करियर, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारे युवा साथियों के लिए समझना जरूरी है कि एंग्जायटी केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो युवाओं के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है।
1: जी हाँ कशिश, जैसा कि आपने बताया था कि चिंता का सबसे पहला असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार चिंता करने वाला व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है, उसका मन किसी काम में लगता ही नहीं, वो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो कहीं और ध्यान ही नहीं दे पाता।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होने लगती है, उसे हर स्थिति में खतरा और असफलता दिखाई देने लगती है। कई बार यही स्थिति अवसाद यानी कि डिप्रेशन तक पहुंच सकती है। ऐसे लोग अक्सर खुशियों का आनंद लेना भूल जाते हैं, उनके सामने सब कुछ ठीक होने पर भी मन बेचैन रहता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी जो एंग्जायटी से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो बार बार नकारात्मक बातें ही सोचने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनके अंदर भविष्य को लेकर ढेर सारे डर बने रहते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर भी वे तनाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में उनके मन में हमेशा ही अनिश्चितता बनी रहती है। जागृति जी, हम कहना चाहेंगे कि युवाओं में यह समस्या विशेष रूप से देखने को मिल रही है क्योंकि यह जीवन का वह दौर है जब व्यक्ति पहचान बनाने, लक्ष्य तय करने और भविष्य की दिशा चुनने की कोशिश कर रहा होता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में दोस्तों

0: एंग्जायटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि युवाओं के अंदर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है। हम देखते हैं जागृति जी कि जब कोई युवा लगातार चिंता में रहता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास कम होने लगता है।
1: जी हाँ,
0: वह हर काम शुरू करने से पहले ही असफलता के बारे में सोचने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और वह अवसरों से दूर भागने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, चाहे प्रतियोगिता हो, इंटरव्यू हो, या मंच पर बोलना हो या फिर कोई नया काम शुरू करना हो, हर जगह युवा साथी डरने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आत्मविश्वास की यही कमी युवाओं की प्रगति में बड़ी बाधा बन सकती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि चिंता व्यक्ति के आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। वो अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है, उसे लगता है कि वो कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: हर निर्णय लेने से पहले वो कई बार सोचता है और फिर भी डरता है। जब आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है तो व्यक्ति नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता, वो जोखिम लेने से बचता है और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होता चला जाता है।
0: जी जी।
1: इसीलिए हम कह सकते हैं कि युवाओं में चिंता का सबसे बड़ा असर पढ़ाई और करियर पर देखा जाता है। परीक्षा का डर, भविष्य की चिंता, नौकरी की प्रतिस्पर्धा और दूसरों से तुलना, ये सारे कारण चिंता को बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब मन चिंतित होता है कशिश, तो एकाग्रता कम हो जाती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, व्यक्ति बार बार वही बातें सोचता रहता है जो उसे परेशान कर रही होती है।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं कि कई छात्र केवल चिंता के कारण अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आप सही कह रही हैं। तो जैसा कि हम युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में युवाओं में एंग्जायटी यानी कि चिंता और भय की समस्या बढ़ रही है, तो आगे भी ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोताओं को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी एंग्जायटी को लेकर, यानी कि चिंता को लेकर, कि चिंता के क्या नुकसान हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे चिंता क्या है, चिंता का मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है, आत्मविश्वास में किसी कमी आती है, पढ़ाई और करियर पर किस तरह से असर डालता है। यही अगर शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर बात करें कशिश, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि चिंता केवल मन की समस्या है, लेकिन इसका असर शरीर पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: लगातार चिंता करने से सिर दर्द, थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और पेट की समस्या होने लगती है। कई लोगों को दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पसीना आने लगता है और सांस लेने में परेशानी होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक चिंता रहने पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवा साथियों में नींद की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि देखते हैं कि एंग्जायटी का सबसे बड़ा नुकसान नींद पर भी पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: कई युवा ऐसे हैं जो रात भर भविष्य, पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों या फिर अन्य चिंताओं के बारे में सोचते रहते हैं। उनका मन शांत नहीं हो पाता, जिसके कारण नींद आने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में साथियों पर्याप्त नींद न मिलने से अगले दिन हमें थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और कार्य क्षमता में गिरावट आती है, और लगातार खराब नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि जो चिंता और भय है वो केवल व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जो चिंताग्रस्त युवा है वो कई बार तनाव के कारण लोगों से दूरी बनाने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे अपनी समस्याएं लोगों से साझा नहीं करते और अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं।
0: जी हाँ, और हम देखते हैं कशिश की चिंता व्यक्ति की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बार बार यही बातें कर रहे हैं।
1: जी,
0: जब मन डर और शंका से भरा होता है तभी सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। व्यक्ति हर विकल्प में खतरे खोजने लगता है, वो निर्णय लेने में बहुत समय लगाता है और फिर कोई निर्णय नहीं ले पाता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओ, चिंता का सबसे दुखद नुकसान ये है कि वो व्यक्ति से वर्तमान का आनंद छीन लेती है।
1: जी जी।
0: वो भविष्य की चिंता में इतना खो जाता है कि वर्तमान की खुशियां भी नहीं दिख पाता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय बिताना, परिवार के साथ हंसना, प्रकृति का आनंद लेना, ये सब पीछे छूट जाता है।
1: जबकि
0: जीवन केवल भविष्य की तैयारी का नाम नहीं है, बल्कि वर्तमान को जीने का नाम भी है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर करियर विकास में बाधा की बात की जाए तो देखते हैं कि करियर निर्माण के लिए साहस, पहल और अवसरों का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एंग्जायटी जो है वो युवाओं को जोखिम लेने से रोकती है। जागृति जी, वे नई जिम्मेदारियों से बचते हैं, इंटरव्यू देने में डरते हैं और अपनी प्रतिभा को सामने लाने में भी संकोच करते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, जिसके कारण हमारी योग्यताएं होने के बावजूद भी हम अवसरों से पिछड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जिस चीज के हम हकदार होते हैं वो भी हमें नहीं मिलती। इसलिए युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे जागृति जी कि युवा साथियों, एंग्जायटी कोई कमजोरी नहीं है।
0: जी हाँ।
1: बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: यदि चिंता समय रहते पहचानी और प्रबंधित की जाए जागृति जी, तो व्यक्ति सामान्य, सफल और संतुलित जीवन जी सकता है।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ।
1: वहीं इसे अगर हम अनदेखा कर दें तो ये आत्मविश्वास, शिक्षा, करियर, रिश्तों और साथ ही जीवन के आनंद को भी प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि चिंता के नुकसान जानना जरूरी है, लेकिन उससे बचने के उपाय जानना उतना ही जरूरी है।
1: जी जी।
0: जैसे नियमित व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेनी है, सकारात्मक सोच को विकसित करना है, समय का सही प्रबंधन करना है, अपनी समस्याएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करनी है,
1: बिल्कुल
0: मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना है,
1: जी जी
0: ध्यान और योग को जीवन का हिस्सा बनाए रखना है और अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है। याद रखिए श्रोता साथियों, हर समस्या का समाधान होता है, चिंता समाधान नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचने में बाधा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जीवन में चुनौतियां आएंगी, कठिन समय भी आएगा, लेकिन चिंता को अपना साथी बना लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: चिंता उस झूले की तरह है जो हमें लगातार हिलाता तो रहता है लेकिन कहीं पहुंचाता नहीं है।
1: जी जी।
0: इसलिए याद रखिए, हमारे भीतर हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति मौजूद है। जब भी मन में चिंता आए, अपने आप से कहिए, मैं समस्या से बड़ा हूँ या बड़ी हूँ, मेरी हिम्मत मेरी चिंता से बड़ी है। जीवन अनमोल है, इसे डर, तनाव और बेवजह की चिंताओं में मत गवाइए। अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर आगे बढ़िए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो चिंताओं के अंधेरे में नहीं बल्कि आत्मविश्वास की रोशनी में चलना चुनते हैं। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथी यही कहना चाहेंगे कि चिंता नहीं चिंतन करें, डर नहीं प्रयास करें, जीवन बहुत अनमोल उपहार है, हौसलों से इसका सत्कार करें।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हुई, हमने युवा साथियों को बताया कि किस प्रकार से हमारे अंदर चिंता और भय की भावना रहती है,
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ढेर सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम युवा साथियों को बता चुके हैं। अब जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना यहाँ पर अंतिम गीत सुनवाए दोस्तों को।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूं है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अच्छा खाना वही है जो बच्चों को ताकत दे। हमारे गांव में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि बच्चा दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: फिर भी उसका शरीर कमजोर रहता है, बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और खेलते समय भी वह जल्दी थक जाते हैं। कई बार माँ भी दिन भर काम करती है लेकिन शरीर में कमजोरी बनी रहती है।
0: बिल्कुल,
1: समस्या कशिश केवल भूख की नहीं बल्कि सही पोषण की है। पेट तो भर जाता है लेकिन शरीर को वह भोजन नहीं मिलता जिससे खून बने, हड्डियां मजबूत हो और शरीर बीमारियों से लड़ सके।
0: जी हाँ,
1: पहले घरों में दाल, चना, बाजरे की रोटी, सहजन की सब्जी और घर का बना खाना खाया जाता था। अब उसकी जगह चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले खाने ने ले ली है और ये चीजें स्वाद तो देती है लेकिन शरीर को ताकत नहीं देती।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार को लेकर। अंजलि जी, बच्चों की मुस्कान, उनका स्वास्थ्य और उनका उज्जवल भविष्य केवल अच्छी पढ़ाई या अच्छे स्कूल से नहीं बनता, बल्कि हम देखते हैं कि इसकी मजबूत नींव सही खानपान से ही पड़ती है।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि दोस्तों, एक स्वस्थ बच्चा ही आत्मविश्वासी, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकता है। लेकिन अंजलि जी, आज के समय में बदलती जीवन शैली और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ और जंक फूड की बढ़ती आदतों ने बच्चों के स्वास्थ्य के सामने ढेर सारी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में हमारे माता पिता को और हम सभी को समझना यह बहुत जरूरी है कि सही खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ भावनात्मक विकास की सबसे बड़ी जरूरत भी है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि जब बच्चे पौष्टिक भोजन को खाते हैं तब वे कम बीमार पड़ते हैं और नई नई चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, साथ ही परिवार में भी खुशियों का वातावरण बना रहता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, बच्चों को ऐसा भोजन चाहिए जिसमें ताकत और पोषण दोनों हो। बाजरा, मक्का, ज्वार और चावल शरीर को ऊर्जा देते हैं। दाल, चना, मूंगफली और अंडा शरीर और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: खून बढ़ाने के लिए गुड़, चुकंदर और हरी सब्जियां जरूरी है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए तेल, दूध, सहजन की पत्तियां फायदेमंद है। बीमारी से बचने के लिए आंवला, नींबू और मौसमी फल बहुत उपयोगी होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बच्चों के लिए जरूरी है कि हम उन्हें स्वस्थ भोजन की आदत डालें। सुबह खाली पेट स्कूल न भेजें। खेलने के बाद चना, गुड़ या फल दे सकते हैं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा कई बार खिलाएं। मोबाइल और टीवी देखते हुए खाना न दें। पैकेट वाले खाने की आदत कम करें और वो खाना जिसे हमने पीछे छोड़ दिया है, हमारे खेतों और आंगन में ही पोषण छिपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: जो खाना पहले हर घर में बनता था कशिश, वही आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बाजरा शरीर को ऊर्जा देता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है और हड्डियों को मजबूत करता है। चना सस्ता होने के बावजूद ताकत से भरपूर होता है।
0: जी हाँ।
1: गुड़ केवल कशिश मिठास नहीं देता बल्कि खून भी बढ़ाता है। सहजन की पत्ती गाँव को आसानी से मिल जाती है और इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन भरपूर होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तिल छोटे दाने जरूर है श्रोता साथियों, लेकिन शरीर को बहुत ताकत देते हैं। आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि पौष्टिक भोजन का मतलब महंगे भोजन से नहीं है, बल्कि हमारे घरों में उपलब्ध साधारण खाद्य पदार्थों में ही पौष्टिक चीजें होती हैं साथियों।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि दालें, फलियां, दूध और दही, रोटी, चावल और बाजरा, दोस्तों ये सभी बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। वहीं अगर जंक फूड की बढ़ती समस्या को लेकर बात करें तो अंजलि जी, जैसा कि आपने भी बताया था कि आजकल बच्चों में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, बर्गर और अन्य पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, इन खाद्य पदार्थों में अक्सर अधिक नमक रहता है, अधिक चीनी रहती है या फिर कह सकते हैं कि गंदे तेल का भी इस्तेमाल होता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में लगातार ऐसे भोजन का सेवन करने से बच्चों में मोटापा, दांतों की समस्या या फिर कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं।
1: जी जी।
0: इसलिए अंजलि जी, बच्चों को पूरी तरह रोकने के बजाय उन्हें सही और गलत भोजन का अंतर समझाना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ महिलाओं को भी इन सारी चीजों को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। घर की महिला स्वस्थ होगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अक्सर महिलाएं सबसे आखिरी में खाना खाती हैं और सबसे ज्यादा काम भी करती हैं। इसी कारण कई महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी और थकान बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: महिलाओं को रोज हरी सब्जियां, दाल, चना, तिल और ये सारी चीजों का सेवन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से ही इन सारी चीजों को सीखता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनका स्वास्थ्य सीधे बच्चों से जुड़ा होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो आयरन, कैल्शियम की गोली समय पर लें, कम से कम 4 बार स्वास्थ्य जांच कराएं, बहुत भारी काम न करें, पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन लें और मौसम बदल लें तो हमारी आदतें भी हमें बदलनी होगी। मौसम के साथ शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। थोड़ी सी सावधानी कई बीमारियों से बचा सकती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा पानी पीना चाहिए और हल्का भोजन लेना चाहिए। छाछ, नींबू, पानी, बेल और तरबूज जो है वो हमारे शरीर को ठंडक देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है स्वस्थ भोजन और स्वस्थ बचपन को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से बच्चों को खाना जो सच में उन्हें ताकत दे वो उन्हें हमें देना होगा। इसी के साथ बच्चों की आदतों में कुछ जरूरी चीजें हमें शामिल करनी है। और कशिश, हमने गीत से पहले ये भी जाना था कि गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो उनका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और उनके स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। इसी के साथ हम ये जान पाए थे कि गर्मी में हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है। यही बरसात में उबला पानी पीना, भोजन ढककर रखना और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके।
1: बिल्कुल,
0: तुलसी, नीम, हल्दी और अदरक इस मौसम में फायदेमंद होते हैं। सर्दियों में बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने चाहिए और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। बाजरा, तिल, गुड़, अदरक और हल्दी शरीर को गर्म रखते हैं और ताकत भी बढ़ाते हैं। याद रखे श्रोता साथियों, बच्चों को धूप और ताजी हवा जरूर मिलनी चाहिए। गंदा और बासी खाना बीमारी बढ़ा सकता है, इसलिए बच्चों को इन सारी चीजों से हमें दूर रखना है। और मौसम के अनुसार भोजन बदलना भी जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से हम गिर जाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर इससे में हम परिवार की भूमिका को जाने तो देखते हैं कि बच्चों की खाने की आदतें घर से ही बनती हैं। यदि अंजलि जी परिवार के जो सदस्य हैं वो भी समय पर भोजन करेंगे, फल सब्जियां खाएंगे और जंक फूड कम खाएंगे तो बच्चे भी उन्हें देखकर यही सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं, इसलिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चों के लिए सबसे बड़े उदाहरण बन सकते हैं। इसी के आगे अगर बात करें तो श्रोता साथियों, कई बार बच्चे भोजन इसलिए नहीं खाते क्योंकि खाने का समय तनावपूर्ण बना दिया जाता है। यानी कि बच्चों को डांट कर या फिर डरा कर भोजन कराने के बजाय माता पिता को अंजलि जी उन्हें प्यार से समझाना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो बच्चों में अच्छी आदतें विकसित होती हैं और परिवार के रिश्ते भी इससे मजबूत होते हैं। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, हमारे घरों में कई ऐसे घरेलू उपाय हैं जो छोटी बीमारियों में राहत देते हैं। खांसी जुकाम में तुलसी, अदरक और शहद फायदेमंद होता है। पेट दर्द में अजवाइन और काला नमक उपयोगी है और कमजोरी होने पर भीगा चना और गुड़ ताकत देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: छोटे घाव पर हल्दी का लेप लगाने से राहत मिलती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बीमारी कई बार खाने से नहीं बल्कि गंदगी से फैलती है।
1: बिल्कुल,
0: साबुन से हाथ धोना सबसे सस्ती और असरदार आदत है। साफ पानी, साफ बर्तन और साफ हाथ अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत है, इसलिए हमें बच्चों को इसके महत्व को भी बताना है। जब गांव का हर परिवार बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझने लगेगा कशिश, तभी असली बदलाव दिखाई देगा। क्योंकि पोषण केवल रसोई की बात नहीं, पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। आंगनबाड़ी में बच्चों का नियमित वजन करवाना जरूरी है। ग्रोथ कार्ड केवल एक कागज नहीं बल्कि बच्चों की बढ़त और स्वास्थ्य की कहानी है। यदि बच्चे का वजन लगातार नहीं बढ़ रहा है तो यह संकेत है कि उसके भोजन और देखभाल पर ध्यान देने की जरूरत है। महिला समूह और गांव की बैठकों में केवल योजनाओं की नहीं बल्कि भोजन और पोषण की बात भी होनी चाहिए। गांव की महिलाएं मिलकर सीख सकती हैं कि सहजन की पत्ती को बच्चे के खाने में कैसे मिलाएं, बाजरे और गोंदों से पौष्टिक खिचड़ी कैसे बनाए, गुड़ और चने से सस्ता लेकिन ताकत देने वाला नाश्ता कैसे तैयार करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि बचपन जो है वो जीवन की वह नींव है जिस पर पूरे भविष्य की इमारत खड़ी होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि श्रोता साथियों इस नींव को सही पोषण, अच्छी आदतों और पारिवारिक सहयोग का सहारा मिल जाए तो बच्चे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मविश्वासी और सक्षम बनते हैं। अंजलि जी, हम देखते हैं कि एक स्वस्थ बच्चा अपने परिवार की खुशी, समाज की आशा और देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक होता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, हमें ये समझना होगा कि बच्चों को दिया गया हर पौष्टिक निवाला केवल उनका पेट नहीं भरता बल्कि उनके सपनों को भी ऊर्जा देता है।
0: जी जी,
1: उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उनके जीवन को एक नई दिशा देता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसलिए हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना है कि हम अपने घरों में पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देंगे, बच्चों को स्वस्थ आदतें सिखाएंगे और ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां हर बच्चा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बचपन जी सके।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने जाना कि सही खाना, स्वस्थ बचपन और खुशहाल परिवार का क्या महत्व है और किस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर हमें सचेत होने की जरूरत है। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम विदा लेते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
3: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है जलवायु परिवर्तन ने आनु प्रभाव अपने खेती माते हरते पड़ी रू है ने किसान भाईयों हमें कई कई चुनौती आवी रही है। तो भाई बोनो अना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: रुपए होती है।
1: बिल्कुल सर, है ना, सही कहा।
0: हाँ, तो धीरे धीरे अगर तापमान का संतुलन बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे फसलों का जो उत्पादन है वो डिस्टर्ब होगा या उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, उसमें फर्क आएगा।
1: जी जी।
0: फिर उनका अंकुरण की जो क्षमता है उनमें फर्क आएगा, ठीक है, और उनके जो रोग है वो भी हम देखेंगे कि जो तापमान के आधार पे, आर्द्रता के आधार पे, नमी के आधार पे वो रोग है वो वहां आते हैं, या कीट पतंगे भी जो है वातावरण के आधार पे या तापमान के आधार पे, नमी के आधार पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: भोजन की तलाश में।
1: बिल्कुल सर,
0: जहाँ पे उनके अनुचित वातावरण हो वहाँ वो ज्यादा रहना पसंद करते हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और उसका किस प्रकार से प्रभाव हमारे खेती पर पड़ता है, यहीं सर किसानों को बदलते मौसम के अनुसार अपनी खेती में क्या क्या बदलाव करने चाहिए?
0: बदलते मौसम के अनुसार हम देखते हैं कि जो हमारा जो खेती में बदलाव का हम बात करते हैं तो हमारे कुछ परंपरागत फसलें हैं जिनमें इस तरह की बदलाव को सहन करने की क्षमता थी।
1: बिल्कुल।
0: तो उन फसलों को हमें पुनर्जीवित करना चाहिए या उन फसलों को हमें पुनः बोना चाहिए, और कहीं उसका बीज संरक्षित है तो वो बीज हमको लाके और उन फसलों को हमको पुनः चालू करना चाहिए।
1: जी जी।
0: ताकि हम जलवायु परिवर्तन से लड़ सके और हमारे अच्छी फसल, साथ ही हमारे जो आसपास का वातावरण है,
1: बिल्कुल,
0: कि हमें पता है कि सौर मंडल में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हम हमारे स्तर पे ऐसे क्या उपाय कर पाए कि जिससे हम उनसे लड़ सके या वो तापमान है हमारे यहाँ बेअसर कर दे।
1: बिल्कुल।
0: जैसे हमको जल संरक्षण है, जल संरक्षण हमको जो है जितनी भी हमारी परंपरागत गतिविधियां है उनको हमको पुनः चालू करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तालाब, पहले बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, है ना, उनको हमको वापिस से लाना होगा।
1: जी जी।
0: हमारे यहाँ जंगल, जंगल के लिए जमीन तो नहीं बची है, लेकिन पेड़ पौधा हम हमारे खेत की मेड़ मेड़ पे लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ पे भी हमारा खाली स्थान पड़ा है कहीं पे भी और जमीन पड़ी है वहां पे हमको हमारा खुद का व्यक्तिगत पौधरोपण करना चाहिए। जहाँ पंचायतों में हम देखते हैं कि खाली जमीन पड़ी है या जहाँ चारागाह है या पहाड़ियां है वहां पे हमको पौधरोपण की गतिविधियां करनी चाहिए, ताकि जो वातावरण में जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा कम असर हमारे यहाँ पे जो है वो रहे और अनुकूल वातावरण बना रहे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें जल संरक्षण के महत्व को भी समझना है, यही सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए किसानों को कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है?
0: खेती को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए सर्वप्रथम तो हमको ये करना चाहिए कि हमको खेती में जो खर्च है, हम क्या देखते हैं कि हमारी एक देखने का नजरिया हो गया कि हम जब फसल बाजार में लेके जाते हैं, बेचते हैं, हाथ में जो रुपया आता है उस रुपये को हम आमदनी समझने लगते भूल से, जबकि वो आमदनी नहीं है, उसमें से खर्चा हमको निकालेंगे तब आमदनी बचेगी। और जब हम ये हिसाब किताब करते हैं तो लास्ट में देखते हैं कि आमदनी के नाम पे या तो हमको गिने चुने कुछ रुपये बचते हैं या कभी हम कह देते हैं कि ये तो घाटे का सौदा है, लेकिन हम हिसाब किताब नहीं करते और हम जो है नकदी फसल पे चले जाते हैं और नकदी फसल को हम करने लगते हैं क्योंकि वो बाजार में एक साथ बिक जाती है।
1: बिल्कुल।
0: हमको ये देखना होगा सर्वप्रथम कि मैं मेरी खेती में कितना जो खर्च है वो कम कर सकता हूँ। जैसे हम खाद को देखें तो हम खाद, हमारे यहाँ पे बहुत परंपरागत विधियां हैं।
1: जी जी।
0: जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, कंडा का खाद है, कंडा पानी है, इस तरह की बहुत परंपरागत खाते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन हम क्या करते हैं कि मेहनत से बचने के खातिर उस ओर नहीं जाके हम बाजार से डीएपी यूरिया खरीद के लाते हैं। एक तो खर्च करते हैं, दूसरा जमीन बिगाड़ते हैं, तीसरा हमारा स्वास्थ्य खराब करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, लेकिन हम वो नहीं देखते, लेकिन हम तुरंत क्या देखते, अरे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये 500 रुपए का कट्टा, ये 1500 रुपए का कट्टा लाके डाल दो चलो।
1: बिल्कुल।
0: और ये जो जैविक खाद बनाने में बहुत समय जाता है और मेहनत जाती है और संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तो इसलिए लोग जो है रासायनिक खाद की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो सरलता से मिल रहा है।
1: बिल्कुल। लेकिन सर हम देखते हैं कि वो सरलता से मिल तो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें कर्जा भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो रासायनिक खाद बहुत महंगे आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जैविक जो खेती है उसमें हमें सामान जुटाना पड़ता है जो कि हमारे आसपास ही होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी खेती को बिना खर्च के पूरा करें तो उसके लिए हमें इन सारी चीजों को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैविक खेती के माध्यम से हम आसपास की चीजों का सही तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं और साथ ही अपने खेती का पोषण भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी खेती में अवसर मौजूद है।
0: बहुत अवसर मौजूद है। हमारे जो परंपरागत खेती पद्धति है वो काफी वैज्ञानिक तरीके से थी। जो आपने जो सर्वप्रथम बात की ना जलवायु परिवर्तन, उससे लड़ने की पूरी क्षमता उनमें है। अभी एक उदाहरण देता हूँ मैं, अक्सर जो देता रहता हूँ हांगणी खेती का उदाहरण।
1: बिल्कुल।
0: हांगणी खेती में हम देखेंगे कि हम 20 से 25 प्रकार की ऐसी फसलें एक ही खेत में बुआई कर देते हैं जो हमारे रोजमर्रा के खाने के काम में आती है। ठीक है। अब अगर मौसम में उतार चढ़ाव हुआ है, या तो बारिश कम हुई, बारिश ज्यादा हुई, या खेत में पानी भर गया, एक फसल खत्म होगी, दो फसल खत्म होगी, तीन फसल खत्म होगी, बाकी फसलें तो उत्पादन देगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इस प्रकार की बहुत सारी परंपरागत पद्धतियां हैं हमारे कृषि शास्त्र में, हमको जरूरत है उनको पुनः लाने की।
1: जी जी।
0: और हमको सरकार को भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परंपरागत पद्धतियों के ऊपर शोध होना चाहिए, और शोध से जो भी निष्कर्ष निकल के आता है वो किसानों के साथ में अच्छी तरह से वापस उनके साथ में शेयर होना चाहिए। क्योंकि रिसर्च तो बहुत होते हैं लेकिन वो किताबें बन के रह जाते हैं, वो किसानों तक वापस आ नहीं पाते, या किसानों के पास आते हैं लेकिन जिस रूप में उनके आना चाहिए उस रूप में नहीं आते हैं। तो इसीलिए किसान भटक रहा है, और ये भटकते किसान को वापस सही रास्ते पे लाने के लिए हमारी जो परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं उन पे हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, और उनको पहचानना पड़ेगा, पहचान के और उनको आज के समय के अनुसार उसमें कुछ जरूरी बदलाव है वो करके पुनः हमको किसानों को देना चाहिए, ताकि वो ये सारी जो चुनौतियां है उनसे लड़ सके।
1: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो जैसा कि हमारी आपसे बातें चल रही हैं कि किसान और बदलती जलवायु की चुनौतियां क्या है, तो आप हमारे किसान भाई बहनों को कार्यक्रम के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: मैं मेरे किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी परंपरागत कृषि पद्धतियों के बारे में आप जानते हैं तो आप हमारा जो वागड़ रेडियो है इस पे आप अवगत कराए, आप अपने जो विचार है वो फीडबैक दे, ताकि हम उनको आने वाले समय में उनके ऊपर बातचीत कर सके, अन्य किसानों के पास भी आपकी बातचीत है वो पहुंचा सके।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: બાયણબોનો સિમકી આવડે આપણે વ્યાસને સોહનજી જોડતા કહ હતા, અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થી બતાડ્યું હે કે આ જલવાયુ પરિવર્તન હું કહેવાય હે, આનો પ્રભાવ ખેતી માટે હળતે વધી રહ્યું હે, ને આને કારણ કીટ પતંગ જે હે એણાનો પ્રકોપ હળતે વધી રહ્યું હે, ને સમાધાન હું થઈ શકે। તો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડા સૂટા।

के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है विकास की अंधी दौड़ में शरीर के साथ मस्तिष्क भी प्रभावित हो रहा है। श्रोताओं, जैसा कि जब हम विकास शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार वाहन और आर्थिक प्रगति की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या केवल यही विकास है? क्या विकास का अर्थ केवल अधिक कमाना, अधिक पाना और दूसरों से आगे निकल जाना है? यदि ऐसा है तो फिर आज दुनिया में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक अशांति क्यों पड़ रही है?
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, इस विषय पर कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
1: जी हाँ,
0: और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, विकास की अंधी दौड़ में शरीर के साथ मस्तिष्क भी प्रभावित हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, ये प्रश्न हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। आज इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन कई बार अपने ही मन तक नहीं पहुंच पा रहा। उसने दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण खोता जा रहा है।
1: बिल्कुल।
0: यही वो स्थिति है जहां विकास की अंधी दौड़ हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करने लगी है।
1: बिल्कुल शाकृति जी, क्योंकि विकास जीवन के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन श्रोता साथियों, जब विकास एक अंधी दौड़ बन जाता है, तब यह हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। विकास का मतलब जागृति जी, जैसा कि आपने भी बताया, कि केवल धन, बड़े घर, ऊंची इमारतें और आधुनिक तकनीक ही नहीं है। सच्चा विकास वो है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल हो।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज हर व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है। जैसा कि आपने बताया, हमारे जो छात्र हैं वो अधिक अंक चाहते हैं, युवा ऊंची नौकरी चाहते हैं, व्यापार में अधिक लाभ चाहते हैं, समाज में हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रयास में लोग ये भूल जा रहे हैं कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, स्वास्थ्य और संतोष भी उतने ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि आज का समय प्रतिस्पर्धा का समय है, हर कोई आगे निकलना चाहता है। हम कहना चाहेंगे कि विकास की अंधी जो दौड़ है, उसमें विकास जरूरी है, लेकिन मन में संतुलन होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब व्यक्ति लगातार काम करता है और आराम नहीं करता, तो शरीर थकने लगता है, नींद पूरी नहीं होती है, सिर दर्द और थकान बढ़ती है। इसी के साथ जागृति जी, आंखों की समस्या बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: मोटापा, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि आज का जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गया है। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि मोबाइल की घंटियां, ईमेल, सोशल मीडिया और काम का दबाव व्यक्ति को लगातार सक्रिय रहने के लिए मजबूर कर रहा है। श्रोता, ऐसी स्थिति में मस्तिष्क को आराम नहीं मिल पाता है, वो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। धीरे धीरे स्थिति इतना तनाव का रूप ले लेती है अंजलि, कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी परेशान होने लगता है।
1: जी जी।
0: उसके अंदर जो धैर्य है वो भी कम हो जाता है और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होने लगता है। आज हम देखते हैं कि कई युवा ये महसूस करते हैं कि वे लगातार व्यस्त हैं, लेकिन भीतर से खुश भी नहीं है। इसका कारण यही है दोस्तों, कि उन्होंने विकास की दौड़ में अपने मन की आवाज को सुनना बंद कर दिया है।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई युवा कम उम्र में ही तनाव और शारीरिक बीमारियों का सामना कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। श्रोता साथियों, शरीर की तरह मस्तिष्क भी लगातार दबाव सहता है, तनाव बढ़ता है, चिंता और घबराहट होती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और एकाग्रता कम हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, कई लोग सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति खो देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब मन स्वस्थ रहेगा, तब जीवन महान बनेगा।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब मस्तिष्क पर दबाव बढ़ता है, तो उसका असर शरीर पर दिखाई देने लगता है। आज हम देख रहे हैं कि लोग देर रात तक जागते रहते हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, घंटों मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां आजकल कम होती जा रही है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता, कम उम्र में ही लोगों को थकान होती है, जैसा कि अभी आपने बताया, सिर दर्द होता है, आंखों की कमजोरी हो जाती है। तो ये जो समस्या है श्रोता साथियों, ये छोटी उम्र में ही होने लगती है। जिन बीमारियों को वृद्धावस्था की समस्या माना जाता था, वे आज युवाओं में भी दिखाई देने लगी है।
1: बिल्कुल।
0: स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार कहते हैं कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कोई भी सफलता लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती है।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन अभी के समय में हम जी रहे हैं, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो उतार चढ़ाव के तौर पर हमारे जीवन में आती है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से आज हम विकास की बात कर रहे हैं, तो हम हमारे श्रोता साथियों से ये कहना चाहेंगे कि विकास हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसी के साथ हमारा मानसिक रूप से संतुलित रहना भी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि जब तक हम मानसिक रूप से शांत नहीं रहेंगे, तब तक हम हमारे घर परिवार, समाज और अन्य लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब मस्तिष्क की चीजें तनावग्रस्त होने लगती है, तो चिड़चिड़ापन और कई समस्याएं, जैसा कि अभी हमने बताया, कि पैदा हो जाती है। इसके चलते रिश्तों में कड़वाहट आना और कई सारी अन्य जो चीजें हैं वो नुकसानदेह हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में हमारे लिए समझना जरूरी है कि विकास के साथ साथ हमारी जो कार्य की गति है, उसको हम सही तरीके से करें और हमारे जो अन्य कार्य हैं जीवन के लिए जो जरूरी होते हैं, उन पर भी हम ध्यान दें।
0: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से जब हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हैं और अगर हमारा मस्तिष्क संतुलित नहीं है तो इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर हमारे ऊपर हमें देखने को मिलता है। यही बात करें तो श्रोता साथियों, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके ज्यादा उपयोग ने मानसिक दबाव भी बढ़ाया है।
1: बिल्कुल,
0: लोग हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, इससे आत्मविश्वास कम होता है और जागृति जी तनाव बढ़ता है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि यह समस्या युवाओं से लेकर बच्चों, बड़ों सब में फैलती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे जीवन के पीछे का संघर्ष नहीं दिखाता, वो सिर्फ उसमें हमारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है। और अन्य लोगों को ये लगता है कि हमारा जीवन उन व्यक्तियों की तुलना में अच्छा नहीं है और ये तुलना धीरे धीरे हमारे मन को और कमजोर करती जाती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलताएं दिखाते हैं, जैसा कि आपने बताया, कोई विदेश यात्रा की तस्वीर डालता है, कोई नई गाड़ी दिखाता है, तो कोई अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है।
0: बिल्कुल,
1: ये सब देख कर कई लोग स्वयं को कमतर समझते हैं। श्रोता साथी, भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया जीवन का पूरा सच नहीं दिखाता। जैसा अंजलि आपने बताया, विकास की अंतिम दौड़ का एक बड़ा दुष्प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: आज परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बातचीत कम हो रही है, लोग मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और अपनों के साथ कम रह रहे हैं। जब रिश्तों में संवाद कम होता है तब अकेलापन बढ़ता है और अकेलापन मानसिक तनाव को और अधिक बढ़ा देता है।
0: जी बिल्कुल,
1: परिवार केवल रहने की जगह नहीं है श्रोताओं, बल्कि भावनात्मक शक्ति का स्रोत है। यदि हम विकास के नाम पर अपने रिश्तों को खो देंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अगर हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है और हम अकेले ही विकास की अंधी दौड़ में खुद को आगे लेकर जा रहे हैं और परिवार पीछे छूट रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम पछताते हैं, क्योंकि हमें हमारे अपनों की जरूरत हर पल पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे पहले हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, परिवार को साथ में लेकर सफलता प्राप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जागृति जी, सच्चा विकास वो है जिसमें शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क शांत हो, परिवार खुश रहे, समाज मजबूत हो और प्रकृति सुरक्षित हो।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि मानव विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानसिक शांति का भी स्रोत है। जब हम पेड़ों, नदी और खुले वातावरण से दूर होते हैं तो मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: और कई सारे शोध बताते हैं कि प्रकृति के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होती है। तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आप भी प्रकृति से नाता जोड़िए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि केवल आर्थिक प्रगति ही विकास नहीं है, बल्कि खुशहाल और संतुलित जीवन ही वास्तविक विकास है। कहा गया है कि धन से पहचान नहीं बनेगी, अच्छे जीवन से शान बनेगी। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि युवा देश का भविष्य है, उन्हें यह समझना होगा कि सफलता और स्वास्थ्य दोनों ही कितने जरूरी है, क्योंकि सफलता के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करना जरूरी है, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है, मोबाइल का कम उपयोग करना होगा, परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और योग और ध्यान को अपनाना होगा, क्योंकि अब युवा स्वस्थ होगा तब राष्ट्र मजबूत बनेगा और यही विकास का सच्चा पात्र है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाए रखने की है। उन्हें पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है और भविष्य भी सुरक्षित करना है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन ये सब करते समय उन्हें अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी ध्यान रखना है। सफलता महत्वपूर्ण है श्रोता साथी, लेकिन सफलता पाने के लिए स्वयं को खो देना समझदारी नहीं है।
0: जी जी,
1: युवा यदि समय प्रबंधन सीख ले, नियमित व्यायाम करे, पर्याप्त नींद ले और सकारात्मक सोच रखे तो विकास और संतुलन दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। चलिए श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सच्चा विकास वो नहीं जो केवल आर्थिक उन्नति दे।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा विकास वो है जो व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए, जहाँ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नैतिकता हो, मानसिक शांति हो, सामाजिक समानता हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो, वही वास्तविक विकास है। यदि विकास हमें तनावग्रस्त, अकेला और बीमार बना दे तो हमें अपने विकास के मॉडल पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि विकास की राह पर चलना जरूरी है, लेकिन इतनी तेज भी नहीं कि हम अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दें। यदि सफलता के साथ शांति नहीं है तो सफलता अधूरी है। यदि विकास के साथ स्वास्थ्य नहीं है तो वह विकास अधूरा है। इसलिए हमें हमारे मन को इतना मजबूत बनाना होगा साथियों कि हम संतुलित जीवन जिएंगे, अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों का ध्यान रखेंगे और ऐसे विकास को अपनाएंगे जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि विकास वही महान कहलाएगा जो तन मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखेगा।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की है, छोटी मोटी रह गई है वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं, लेकिन अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर हाल में सबसे आगे निकलना ही लक्ष्य हो। जीवन एक यात्रा है जिसमें स्वास्थ्य, खुशियां, रिश्ते, संवेदनाएं और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की सफलता।
1: जी जी।
0: यदि विकास की राह पर चलते हुए हमारा शरीर थक जाए, हमारा मन टूट जाए और हमारे रिश्ते बिखर जाए तो वो विकास अधूरा है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो हमें केवल सफल ही नहीं बल्कि स्वस्थ, संवेदनशील और संतुष्ट भी बनाए। इसलिए हम विकास के अंतिम दौड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम संतुलित जीवन जिएंगे, अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों का सम्मान करेंगे, परिवार और प्रकृति से जुड़ेंगे और ऐसी प्रगति को अपनाएंगे जो मानवता को आगे बढ़ाएगी। विकास की राह पर चलना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं दौड़ना है कि हम अपने आप से ही दूर हो जाए। सफलता का सबसे सुंदर रूप वही है अंजलि, जिसमें मन शांत हो, तन स्वस्थ हो और जीवन में संतोष हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब हम विदा लेते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज से, क्योंकि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई हैं।
0: बिल्कुल,
1: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे निर्णयों पर और हमारे विषय पर। आज का विषय है गलत संगति जीवन को कैसे प्रभावित करती है। वो कहते हैं ना श्रोता साथियों, फूलों के बीच रहने वाला धागा भी महकने लगता है और धुएं के बीच रहने वाला कपड़ा भी गंध पकड़ लेता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है, जिस संगति में रहता है धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। तो आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि गलत संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से हमें हमारी संगति का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला ये गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बात करने वाले हैं गलत संगति जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो श्रोता साथियों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलता है। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ लोग हमें धीरे धीरे गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके मित्रों और उसके साथ रहने वाले लोगों से भी होती है। जी हाँ श्रोता साथियों, संगति का अर्थ केवल मित्रता नहीं है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, वही हमारी संगति कहलाती है। और यह संगति मित्रों की हो सकती है, पड़ोसी की हो सकती है, सहकर्मी की हो सकती है, या आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया की भी हो सकती है। इसलिए संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है साथियों कि हर रोज जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, धीरे धीरे उनकी सोच हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगती है। यही अब जाने साथियों कि गलत संगति की शुरुआत आखिरकार होती कैसे है, क्योंकि हम दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि संगति कैसी होनी चाहिए और संगति का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ता है, तब तक हम अच्छी संगति में नहीं रह सकते। तो अक्सर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत रास्ता नहीं चुनता, शुरुआत बहुत छोटी होती है। कई बार किसी की बातों से प्रभावित होकर, समूह में शामिल होने की इच्छा से, अकेलेपन के कारण या दूसरों जैसा दिखने की चाह में व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है श्रोता साथियों, जो उसे धीरे धीरे गलत आदतों की ओर ले जाते हैं। शुरुआत में हमें ये सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ उसका असर दिखाई देने लगता है और इसका प्रभाव श्रोता साथियों यकीन मानिए धीरे धीरे हमारी सोच पर पड़ने लगता है। संगति का सबसे पहला प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार भी सकारात्मक बनते हैं, लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही होती जाती है। कहते हैं ना कि गलत संगति सबसे पहले आदतें नहीं बदलती, सोच बदलती है। और जब हमारी सोच बदलती है तो इसका असर हमारे आत्मविश्वास और लक्ष्य पर पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने और लक्ष्य होते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, गलत संगति व्यक्ति का ध्यान उसके उद्देश्य से भटका सकती है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, इतना मेहनत करके क्या ही करेगा, छोड़ो बाद में देखेंगे, जिंदगी तो मजे करने के लिए होती है। यही सारी चीजें हमें बहुत सी बार हमारे दोस्तों के बीच में भी सुनने को मिलती है। तो हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है श्रोता साथियों, क्योंकि अगर कोई हमारा दोस्त इस तरीके की बातें करता है तो हमें दूरी बना लेनी है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कार्यक्रम में बताया आपको कि संगति का प्रभाव सबसे पहले हमारी सोच पर पड़ता है, और अगर उसका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है तो हम हमारे लक्ष्य से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हम अपने भविष्य को गंभीरता से नहीं ले पाते। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूंगी श्रोता साथियों, कि रास्ते कभी अचानक नहीं बदलते, पहले सोच बदलती है, और सोच बदलने में अक्सर संगति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो साथियों, आपको हमेशा अपनी संगति पर ध्यान देने की जरूरत है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, किनसे बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपके जो मित्र हैं वो नकारात्मक चीजों से भरे पड़े हैं, तो आपको वहाँ से दूर हो जाना है, क्योंकि अगर आपकी सोच पर उन गलत चीजों का प्रभाव पड़ा तो आपका जीवन खराब हो सकता है। तो बातें कार्यक्रम में जैसा कि हमारी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया कि रास्ते कभी अचानक नहीं बदलते, पहले सोच बदलती है और सोच बदलने में अक्सर संगति की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ श्रोता साथियों, गलत संगति का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को ऐसी आदतों की ओर ले जा सकती है जो उसके जीवन को नुकसान पहुँचाती है, जैसे कि समय की बर्बादी, पढ़ाई या काम में लापरवाही, झूठ बोलना, अनुशासनहीनता, नशे जैसी हानिकारक प्रवृत्तियाँ। इनमें से कोई भी आदत अचानक नहीं बनती, अक्सर इसकी शुरुआत गलत संगति से होती है। इसी के साथ इन सारी चीजों का प्रभाव जो है श्रोता साथियों, हमारे परिवार और रिश्ते पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति गलत लोगों के साथ रहता है ना, तो उसका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बदलने लगता है। वह परिवार की बातों को महत्व नहीं देता, जिम्मेदारियों से बचने लगता है और घर वालों से दूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है और कई बार परिवार को समझ ही नहीं आता कि ये बदलाव क्यों आ रहा है। तो श्रोता साथियों, हमें ये समझना होगा कि हमारी संगति कैसी हो। युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगी कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि युवावस्था जीवन का वह समय है जब व्यक्ति सबसे अधिक सीखता है और सबसे अधिक प्रभावित भी होता है। इस उम्र में मित्रों और साथियों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, इसलिए युवाओं को यह समझना होगा कि मित्र वह नहीं है जो केवल साथ समय बिताए, मित्र वो है जो सही दिशा दिखाए। सच्चा मित्र श्रोता साथियों वही होता है जो आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करे। जो मित्र आपके सपनों को मजबूत करेगा श्रोता साथियों, वही सही मित्र है। अच्छी संगति के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छी संगति हमें बहुत कुछ देती है, जैसे कि अच्छी संगति हमें प्रेरणा देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, मेहनत की आदत सिखाती है, सकारात्मक सोच विकसित करती है और जीवन को सही दिशा देती है। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। साथियों, तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि वाकई में संगति का असर हमारे जीवन पर इस तरीके से पड़ सकता है, तो हमें संगति चुनते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो साथियों, सबसे पहले जीवन में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह यह तय करे कि उसे किन लोगों के साथ रहना है। संगति चुनते समय आपको सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्या यह व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या नहीं, क्या इसके साथ रहने से मेरे व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता है या नहीं, क्या यह मेरे सपनों और मूल्यों का सम्मान करता है। यदि जवाब हाँ है तो वह संगति लाभदायक है। जी हाँ श्रोता साथियों, एक अच्छा समाज तभी बनता है जब उसके युवा सही दिशा में आगे बढ़े, और सही दिशा केवल शिक्षा नहीं अच्छी संगति से भी मिलती है। परिवार, विद्यालय और समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं को ऐसे वातावरण से जोड़े जहाँ सकारात्मक सोच, मेहनत और जिम्मेदारी को महत्व दिया जाए। इसलिए दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन की दिशा तय करने में संगति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गलत संगति धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, आदतों और निर्णयों को प्रभावित करती है। कई बार व्यक्ति को इसका एहसास ही नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों का सम्मान करें और सही राह पर आगे बढ़ने में मदद करें, क्योंकि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं आती है साथियों, सही दिशा से भी मिलती है और सही दिशा चुनने में संगति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि संगति बीज की तरह होती है जो धीरे धीरे व्यक्तित्व बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपके भीतर की अच्छाइयों को और मजबूत करे। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, अब कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेना चाहूंगी, लेकिन श्रोता साथियों, जाने से पहले मैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।